मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन प्राटफर्ट 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Big things are happening at Sunrise Radio.
1: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
0: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
1: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: का जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
0: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स
4: 24 hours a day.
5: It's a classic hit. Flashback as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: My favourite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देता है।

100.6 FM पे भी आप सुन सकते हैं और DAB पे आप सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और इन्हीं दिनों में कुछ दिनों में आप ढाबी में भी सुन पाएंगे अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे तो दोस्तों प्रणाम लेकर खिदमत में हाजिर हुआ हूं मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक अब से लेकर 1 बजे तक आप दोस्तों के लिए डेडिकेशन होगी और 1 और 2 के दरमियान इनके प्रोग्राम के आखिरी आवर में लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे तो दोस्तों एक बार फिर वक्त जो है वो हो चुका है कमर्शियल का तो कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे उसके बाद आप हिट ऑफ द आवर सुनेंगे और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के लिए होगा जो इस वक्त संडा रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल ब्रेक पे चलेंगे उसके बाद आप सुनेंगे छोटी सी इवेंट्स डायरी और उसके बाद आप सुनेंगे जनाब हिट ऑफ द आवर उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: अभी आपने अर्शद महमूद की प्यारी सी आवाज में दोस्तों हिट ऑफ द आवर सुना। इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं और आप भी अपनी घड़ियों की जानिब निगाह दौड़ाइएगा।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:41 यानी कि 41 minutes past 11। तो चलते हैं एक और प्यारा सा गीत। चौधरी मुजफ्फर साहब जनाब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपके लिए। थोड़ी देर के बाद ज़रूर गीत प्ले करूँगा। आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा। और उसके बाद हडर्सफील्ड से वाजिद भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। और उसके बाद जनाब हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। और आपके नाम भी गीत करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चौधरी मुजफ्फर साहब, आप भी इंतज़ार कीजिएगा, ज़रूर गीत प्ले करेंगे आप दोस्तों के लिए। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: हां दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46 यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 11। तो जनाब चलते हैं कमर्शियल की जाने में। कमर्शियल के बाद भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब आपने मैनचेस्टर से फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आपके नाम गीत करेंगे और उसके बाद हीरा खान साहब आपके नाम करेंगे, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपके नाम करेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे और जनाब तारिक जुल्फी साहब उनके नाम चौधरी मनीष साहब चक्की वाले और जनाब नसरीन साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। आप अपनी बिटिया आसमा के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो ये पुराना गीत भी आपके नाम करेंगे अभी जो कमर्शियल के बाद चलेगा तो आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी आजरा जी आपके नाम भी करेंगे, साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ कांटे अंगूठियाँ हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

गई था प्यारा आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया माजे जाते हैं और अब आसमा बेटिया आपने फोन किया आपके नाम ये गीत करते हैं अमूना जी आपके नाम करते हैं और सोनिया बहन आपने बर्मिंघम से फोन किया शुक्रिया आपके नाम भी करते हैं तो चलते हैं सुनते हैं एंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। यही हिस्सा होता है जिसमें डेडिकेशन होती है, क्योंकि प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो होगा, यानी कि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा एक और दो के दरमियान, वो लाइव कॉल्स का होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करेंगे हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है, ये सभी दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर दोहराई देता हूं कि अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं या किसी गीत के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो जनाब इसी आवर में फ़ोन कीजिएगा एक बजे तक, क्योंकि एक और दो के दरमियान हम जो हैं वो क्या कहते हैं उसको लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो इसी आवर में फ़ोन कीजिएगा अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दोस्तों, इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों इस वक्त 12:12 हुआ चाहते हैं और अब कमर्शियल का टाइम है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत सभी दोस्तों के लिए।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

जी दोस्तों, अभी आपने आशा भोसले और कुमार सानू को सुना, और अब एक और प्यारा सा गीत आ रहा है, और ये गीत प्यारी बहना साजिया जी, आजरा जी आपके नाम, और अमरीन साहब आपके नाम, और इसी गीत को जनाब मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम, जिनमें इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज, और इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

जी दोस्तों अभी आपने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और जीत कौर भैना फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा अपनी बहन से बात करके और आपके लिए थोड़ी देर के बाद और कोई प्यारा सा गीत जरूर प्ले करूंगा फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा और प्यारी बहना आप बहुत मेरी प्यारी बहन है बहुत प्यार करती हैं अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते रखे तो चलेंगे अब इस गीत की जानिब और ये गीत आप सभी सुनने वालों के नाम करूंगा तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को

0: प्यारा सा गीत था आप प्यारे साथियों के लिए पेश किया। अब दोस्तों वक्त हुआ जाता है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे गीत, आपकी जन से दोस्तों के नाम करेंगे और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे।
1: 24 hours a day, अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और उदय नारायण की आवाजों में। आप जो गीत पेश करने जा रहे हैं, ये गीत

पसंदीदा गीत है जनाब हमारे जो तीन शहजादे बाबर शाह पे काम करते हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनका फेवरेट गीत है, उनके नाम करेंगे और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और ये फेवरेट गीत है मलिक इम्तियाज़ साहब का भी, उनकी पूरी टीम का भी, वो भी इसकी फरमाइश करते होते हैं। मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज, आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। चौधरी फरियाज साहब भी उस वक्त पाकिस्तान में बैठ के सुन रहे हैं और इसी गीत को चौधरी मुजफ्फर साहब भी छुट्टी पे हैं, घर पे हैं और वो भी सुन रहे हैं, तो उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में ये पहला सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कुमार सानू की मत भरी आवाज में। मलिक इम्तियाज साहब शुक्रिया फोन करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उसके बाद ताज दुखी साहब, यार मेरे आज कोई मूड नहीं था ना आपसे झगड़ा करने का, क्योंकि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हर मुश्किल मुसीबत से आपको बचाए। और क्योंकि कल आपने फौरन ही बता दिया कल आपका ऑपरेशन है, तो इसलिए फिर मैं चुप हो गया जनाब, वरना लड़ाई ज़रूर होती है। दुखी नाम क्यों रखा हुआ आपने? तो इतने आप बड़े दलले दरार आवाज़ में बात करते हैं, बड़ी जोशीले अंदाज में बात करते हैं, बड़े प्यार से, और दुखी वाली तो बात ही नहीं है, तो ये क्यों रखा? लेकिन फिर आपने जब कहा कि आपका कल आपका ऑपरेशन है, तो हम ढेर सारी दुआओं के साथ आपको कल रवाना करते हैं जनाब। अल्लाह तबारक तआला आपका ऑपरेशन कामयाब करे, और आपको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और किसी का मोहताज न करे। तो जनाब बहुत शुक्रिया ताज दुखी साहब, आपने कहा कि आप इस वक्त जो है वो गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं क्योंकि रफ़ी साहब का गाना लगाने लगा हूँ पुराना गाना, तो ताज दुखी साहब आपके नाम करूँगा। आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के लिए, जगीर साहब के लिए, मेहताब हुसैन साहब के लिए, जीशान साहब के लिए, और आपके जिगरी दोस्त हैं पाकिस्तान चक सवारी में इस वक्त अंसर अली साहब, उनके लिए भी आप गीत सुनना चाहते हैं, तो दोस्त आप के लिए गीत होगा कमर्शियल के बाद रफ़ी साहब का। ताज दुखी साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, और इंजॉय कीजिएगा गीत का, गीत को। और एक बार फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपका ऑपरेशन कामयाब करे और खैरियत के साथ घर वापस आएँ, और अल्लाह आप को किसी का मोहताज न करे जनाब। दुआएँ हमारी आपके साथ, और इसी गीत को चौधरी फिलहाल साहब आपके नाम करेंगे, मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर, इफराज, जनाब इकमाज, इन सब के नाम करते हैं। और फिर चौधरी रुखसार अहमद साहब आपके नाम करते हैं, इरा साहब, वाजिद भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब, और चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, तारिक जुल्फी साहब, महबूब अलाई साहब, वाजिद भाई अड्डे स्पीड वाले, और दीगर तमाम सफीउल्लाह भाई और दीगर दोस्तों के नाम करते हैं। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो घड़ियां बता रही है 12:48, यानी कि 48 minutes past 12। तो चलते हैं कमर्शियल की जाने में, कमर्शियल के बाद रफी साहब को सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आपने जनाब पसंद किया होगा। शाहीन बहना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। और अब जनाब आते हैं अगले गीत की जानिब। शाहीन बहना आपके नाम करेंगे, इमरान भाई ब्रेडफोर्ड से आपने फोन किया आपके नाम करेंगे, ताज दुखी साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, अजरा जी आपके नाम करेंगे। और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। और मुदस्सर कियानी साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, आपके नाम भी करते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के जनाब दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी इस आवर में अगर गीतों का मौका मिलता है तो अच्छे गीत पेश करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: सनराइज रेडियो हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो। सनराइज रेडियो हिट ऑफ द आवर।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा और हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश किया। इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:11, यानी कि 11:12। जैसा कि मैंने कहा कि लाइव कॉल का सिलसिला होगा और लाइव कॉल्स में आप जो है वो जो शायरी कर सकते हैं या गीत गुनगुना सकते हैं। और नदीम भाई, इब्रार भाई और नदीम भाई, इफरार भाई और तीसरा नाम है भूल, जंगीर भाई, आप माजर चाहते हैं, आप के लिए गीत नहीं मैं प्ले कर सकता आप, क्योंकि ये लाइव कॉल्स का सिलसिला है, इसमें जो है डेडिकेशन नहीं होती है, वरना अपने भाइयों के लिए ज़रूर गीत लगाता। तो तालियों की गूंज में चलते हैं, यहाँ देखते हैं कौन है हमारे साथ मौजूद इस लाइन पे। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। और तनवीरी,
2: नंबर दिता,
0: ओ बेटा बात सुनो, प्रोग्राम सुनती हो तुम, रेगुलरली सुनती हो, पता है लाइव कॉल्स का ये है, इसमें आप आ रही हैं मेरे साथ, ठीक है? आपका नाम मैं लिख दूंगा इधर, रजिस्टर कर दूंगा। नया नंबर लिया है आपने? ठीक है फिर, ठीक है बेटा,
2: नंबर है,
0: ठीक है बेटा, मैं लिख दूंगा इधर, ठीक है
2: ना?
0: अलग कोई गल नहीं, उन्होंने मैं पूछी क्या गवाया नहीं, ठीक है ना? ओके
2: ओके, थैंक यू,
0: ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और क्या बताएं, अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद ही कोई लाइव कॉल्स लेंगे जनाब।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी एडवर्ट सुनी और जैसा कि अब आपको पता है लाइव कॉल्स का सिलसिला होता है और इसमें डेडिकेशन नहीं होती, लेकिन बाबर शाह पे ये शहजादे जो है ना, ये बहुत तंग करते हैं और यहाँ दोस्त आ जाते हैं और फिर वो दोस्त कहते हैं तो फिर हम दोस्तों का कहा टाल नहीं सकते जनाब। और वहाँ नदीम साहब, इबरार साहब और जहीर साहब बैठे हुए हैं, तो उनके नाम ये गीत और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है। अगर आप शायरी का शौक़ रखते हो या गीत गुनगुनाने का तो ज़रूर आइएगा, आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों अब चलते हैं अगले गीत की जाने भी। ये भी प्यारा सा गीत है, आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसे एंजॉय करेंगे, एंजॉयबल गीत है। तो चलिए थोड़ा कविता कृष्णमूर्ति जो है मस्ती में थोड़ा गाती हैं। तो सोबत भाई लीड से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो भी जनाब गाने के लिए कह रहे होंगे क्योंकि आने तो कोई नहीं आएंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज में। इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ जाता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, एंजॉय कीजिएगा।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

साधना सरगम और सुरेश वाटर की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। अब चलते हैं अगले गीत की जानिब। ये गीत भी मेरी जानिब से तमाम दोस्तों

0: तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि अब वक्त हो चुका है जोहर की अजान का। तो चलेंगे दोस्तों, सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद मिलते हैं।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही हम चलेंगे जनाब टाइम चेक कर लेंगे और उसके बाद क्योंकि फिर वक्त जो है वो कमर्शियल के बाद फ्लैशबैक का हो गया है, तो चलते हैं पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है 1:46, यानी कि 1:46। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जनाब आप सुनेंगे अपना हिट ऑफ द आवर फ्लैशबैक, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
3: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
5: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
5: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
6: My favourite radio station, Sunrise Radio.
7: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
8: We love Sunrise Radio.
9: The greatest station, radio station in the world.
10: Sunrise Radio.
11: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने जंजीर फिल्म से ली हुई ये कवाली आप दोस्तों के लिए पेश की। और दोस्तों, इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद रखते हैं दोस्तों आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे और आखिर तक हमारे साथ रहे। तो जनाब, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल जनाब सुबह 11:25 पे होगी। तब तक के लिए अमर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाई।

वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अभी तक खूबसूरती से गुजर रहा होगा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अपनों के साथ साथ रहें, आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबके दुख दर्द, बीमारियाँ, परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर फरमाए, बहुत जल्द आपको सेहत याब, तंदुरुस्ती और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे, आमीन। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ रहूंगी अगले 3 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे। मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र है, आपके साथ साथ हमें गुजारना है, आपके साथ साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी हमारा साथ देंगे।

0: हफ्सैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो अभी तक जो भी हमने पेश किया गीत आपको पसंद आ रहे होंगे और यकीनन आने वाले गीत भी आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरे गीत हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं और खूबसूरत गीतों का खजाना है जिसे लौटाएंगे हम आप पर। चाहेंगे आपका खूबसूरत सा साथ और बिताएंगे इस खूबसूरत सफर को आपके साथ साथ।

0: मेरी ओर, फिर शेर को मैं बोला ये मामू वंस मोर।
1: अरे भाई शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ?
0: डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर्किट, अरे कितना मजा आया।
1: ऐसा हो गया भाई।
0: हाँ?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, जिनका साथ और प्यार हमें मिला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें नवाजते हैं। और आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ये सफर और भी खूबसूरत और हंसी हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, आपके साथ का और प्यार का। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुनो सुनो ओ बस्ती वालों,

0: सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

थ्रू FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें DAB पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 FM पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरदेव के इलाके में और इर्द-गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

तलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

जी हाँ जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफ़े हो जाता है कि आपके फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाएं। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सके आपके साथ साथ।

सुन रहे हैं गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आयान खुश आमदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के

हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी जिंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3010, ब्रेडफोर्ड 7230-3010।
3: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analog 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: 24 hours a day.
3: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: आज भी विश्व में छाई है हिंसा और नफरत की आंधी, तो अमन चैन फैलाने को जग में अवतरित फिर क्या होंगे गांधी? जब तक दहशतगर्दी इस दुनिया में जिंदा रहेगी, तब तक अपने बापू की आत्मा शर्मिंदा रहेगी।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफ्सेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

गल है जी, यादों पर अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 ब्रैडफोर्ड 7230।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: छोड़।
1: यूजलेस।
0: ओके।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।
3: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: Live on the decks, bringing you the hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुए
5: थे।
6: हम शरीफ क्या हुए,
5: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश।
5: देखो मैं हूँ कहाँ।

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते श्रीकाल खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम में आपका होस्ट दोस्त यहाँ पे हाजिर है। मेरा नाम परवेज़ आम ही टिल अलम कबीर शाम और आप सबके नाम रंग महफिल का प्रोग्राम है। एंड टुडे इज अमेजिंग डे एज यू नो टुडे इज वेडनेसडे इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल एंड टुडे इज द 3rd ऑफ जून 2026 द वेदर हैज बीन सच अ लवली टू बी द रोमांटिक मौसम है। कहाँ पर जा रहे हैं कहाँ पर आ रहे हैं वट इज योर ब्यूटिफुल plan for this beautiful evening and you're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Ankington or Milton Keynes mein hamara program suna jaa raha and very very very very very soon we will be launching on DAB Plus on the Derby and Midlands mein hoga on Sunrise Radio Gold and that is all about and will be very very soon or also you can download the Sunrise Radio app on Apple Play Store and Google Play Store and that's what it's all about and not forgetting on www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio इतनी खूबसूरत facilities हैं हमारे आपके लिए और हम सब के लिए and you can tune into us on Sunday Radio and if you want to give me a call, if you want to give me a missed call, if you want to give me a flash, if you want to give me a buzz, it's 0127430 96 96 पे लाइनें काफ़ी जमग हो चुकी हैं और जगमग जगमग कर रही हैं यहाँ पे और हमें अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया क्योंकि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और सबसे पहले हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर। आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून। Enjoy.
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया सर आपके दोस्तों का, क्योंकि कॉल सब आ रही हैं और दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, आप हमें याद करें। और बाना जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बहना का वेलकम जी, अनु खुश आमदीद आपको भी कहेंगे वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया है, और सबसे पहले कॉल आज आई है हमारे चौधरी रुखसार भाई की, वेलकम जी अनु खुश आमदीद आपको भी हम कहेंगे, और सत बिस्मिल्लाह और मुबारक बात पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, अल्लाह पाक में खुश रखे, शायद बात रखे। देन वी गो लवली कॉल फ्रॉम वाजिद भाई हैं, देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम हमारे गिदन भाई, हमारे गुरुजी हैं, हमारे भाभी जान हैं, वेलकम जी एन खुश आमदीद आपको भी। द नंबर एंडिंग 001, आई डोंट नो हु यू आर, आपके लिए भी गाना आने वाला है, मुझे उम्मीद है यकीन का एंजॉय करें। अतिका साहिबा हैं, सिमी जी हैं, नौशीन जी हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और लाइन काफी बिजी हो चुकी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इफ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू डू बेयर विद मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत में आप सब दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूं, एंड देन आई वुड डेडिकेट वन बाय वन ऑल दोस ब्यूटीफुल डेडिकेशन, एंड डेफिनेटली दिस ट्रैक इज गोना गो आउट टू ऑल ऑफ यू आउट देयर, एंजॉय द ट्रैक।

Wow, what amazing tune that was. And moving on to another beautiful track, hit after hit. And this track is going to go out to हमारे चौधरी रुखसार भाई. ये गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. और यही गीत मैं पेश करूंगा वाजिद भाई आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करें. मुदस्सर कियानी साहब आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. बड़ा ही खूबसूरत गीत है. वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून. और क्या कहने जी. और समिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने हमें याद किया पहली दफ़ा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. बनो जी ये गीत भी आपके लिए पेश करना चाहिए. मुझे उम्मीद है यकीन आप इंजॉय करेंगे और हमें अच्छा लगेगा. मुदस्सर कियानी साहब आपके लिए और आप ही क्या याद करेंगे मेरे भाई. और बहुत ही खूबसूरत गीत है. एंड वंडरफुल ट्यून आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और जो भी आपके दोस्त अहबाब अजीज़ हैं आपके साथ हैं उनके लिए भी गीत होगा डेफिनेटली. और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आप आए और बाहर आ गए. और थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और मूविंग ऑन टू द ट्रैक व्हिच आई एम गोना बी प्लेइंग. इफ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद अ कार एंड इफ यू आर आउट एंड अबाउट स्टिक अराउंड विद द सनराइज रेडियो. एंड आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम मैनचेस्टर एंड यू नो व्हाट अदर डे आई वाज इन बर्मिंघम. और वहां पे शूटिंग हो रही है सियारा 2. और क्या कहने जी क्या कहने. व्हाट अ जबरदस्त मूवी. यू प्रोबब्ली सीन द मूवी सियारा. एंड दैट वाज अ कामयाब मूवी थी. और आर्यन पांडे की जो अक्षय पांडे पांडे का नेफ्यू है और सॉरी चुंके पांडे का नेफ्यू है उसकी मूवी यहाँ पे शूटिंग हो रही है बर्मिंघम में. और क्या कहेंगे क्या कहने जी क्या कहने. एंड सीन द मूवी एंड यू नो टू व्हेन यू सी द मूवी एंड यू नो यू ऑल देयर एंड हियर एंड इट्स अमेजिंग माइंड ब्लोइंग. एनी वे इफ यू वर देयर एंड यू प्रॉब्ली एंजॉयड इट. एनी वे ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. एंजॉय द ट्रैक.

0: Right, and that was a mind-blowing tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, thank you very much के आपने enjoy किया, that was one of my favorite tune. Anyway, moving on to the ad break, and after the ad break, I've got a very, very, very special track lined up, and that track is gonna go out, मतलब शुक्रिया निशा आपके लिए होगा, और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे, और आपके दोस्तों के नाम होंगे, और आपने कहा कि हमने दुआएं की हैं चौधरी फरियाज साहब के लिए, चौधरी फरियाज साहब छा के इंदिरी दुआएं दुआएं हो रही हैं माशाल्लाह, और क्या कहने जी, और क्या चाहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ देने हैं चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फरियाज साहब आप हमारा साथ दे रहे हैं, और जाकल्ला खैर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए दुआएँ हैं, और दर्शक यानी सबके दोस्तों ने सब ने दुआएँ की हैं आपके लिए, खसूस ने दुआएँ की हैं, और सब ने, और वाजिबा क्या कहने जी, और हम यहाँ पर कह रहे हैं आमीन, और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड.
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत.
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303.
3: क्योंकि सोने बिछाई महंगाई में चांदी ले आई.
4: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई. चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें. पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो, और यहाँ पे हमने पेश करना, ये गीत पेश करेंगे हमारे भाई रुखसार भाई हैं, और चौधरी रुखसार भाई ये गीत आपके लिए, और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और गिदन भाई सुमित्रा जी ये गीत आपके लिए भी होगा, और बाना जी ये गीत आपके लिए, सोनिया जी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम गीत आपके लिए गया, और मुदस्सर यानी साहब आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. चौधरी फैसल साहब हैं, राजा आसफ साहब हैं, चौधरी बशारत हुसैन हैं, राजा नबील राजा नबील साहब हैं, और चौधरी यासीन और जंगीर साहब और उनके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और चौधरी मुनीर साहब आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और स्पेशली ये गीत आने वाला गीत होगा, और हमारे मोहतरम हैं चौधरी फरियाज साहब आपके लिए भी होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और चौधरी साहब ये गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. चौधरी मुनीर साहब सोने दे मनमोनियो आपके लिए गीत, ठीक है ना, एक और गीत होगा आपके लिए, और भाई रुखसार भाई आपके लिए गीत होगा, आप ही क्या याद करेंगे मेरे भाई, आप ही क्या याद, थोड़ा सा दुखी गीत है, और क्योंकि हमारे मोहतरम अहमद शकियानी साहब का ये फेवरेट गीत है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए पेश करूं, और चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा, ठीक है ना, आपने इसको इन्जॉय करें, और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, और कियानी साहब वाह जी वाह, मान गया चुका निशा, मन ही गया कसमें, मुस्करा रहे हो, मुस्कराओ और मुस्कराओ, क्या है ना, एक गाना सुनो तो मुस्कराओ. एनीवे, एंजॉय द ट्रैक, और ये खूबसूरत गीत है, एंजॉय.

0: Right, that was mine blowing a track और आपने definitely enjoy किया. मैं दर्शकों कहने सब आपने enjoy किया definitely और आपके दोस्त ने enjoy किया और हमें अच्छा लगा और हमारे भाई रुखसार भाई ने enjoy किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. बाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच मिस्टर मिसेज पटेल, आपने गाने को enjoy किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग और से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आप आए और बाहर आ गए. बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम जी आनो खुश आमदीद साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे आपको भी और हमने भी आपको मिस किया है. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शायद आबाद रखे और जो गैर हाजिरी हुई है मुझे पता है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और अतिका साहब हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एनी वे यहाँ भी हमने क्या करना है कि छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक करनी है. उससे पहले हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है. कंप्यूटर जी हमारे साथ आज मस्ती नहीं करनी, ठीक है. ये कंप्यूटर जी मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे रिफ्रेश करे हैं. मैंने कहा है अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मैं क्या करूंगा. और ये भी एक सिस्टम है. क्या करें क्या करें क्या करें यार. ये जो होता है ना ये दिन को किया करें और दिन को किया करें अच्छा होता है, ठीक है. और यहाँ पे यह भी मुझे बता रहे हैं कि आपने मुझे रिफ्रेश करें. वाह जी वाह वाह जी. क्या कहने क्या कहने क्या कहने. एनी वे यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक.
0: Well, our time in the studio is 43 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the power of his gun. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी और ब्रेक क्या है 30 सेकंड की ब्रेक हो रही. वाह जी वाह क्या कहने जी क्या कहने. एनी वे कोई मसला नहीं और हम जो ना वो गाना आपके लिए पेश करेंगे और जो आपकी मेमोरी के लिए होगा, जो आपकी जो ना वो टाइम के साथ चलेंगे ना क्या हाल है. और उसमें जो फ्लैश बैक बड़ा ही मशहूर मकबूल गीत है और क्या गीत है, ज़बरदस्त गीत है. और मैं सोच रहा हूँ शला फ्ले दैट फक और शला एक और गीत है जो मेरा फेवरेट गीत है उसको हम पेश करते हैं क्योंकि वो जो गीत है ना हाय हाय हाय क्या गीत है. जब भी मैं सुनता हूँ उस गीत को और उसकी जो रीमिक्स अभी आई हुई है, रीमिक्स उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत है उसकी जो रीमिक्स है. ओए होए होए क्या रीमिक्स है, ज़बरदस्त है. कुछ ऐसे गीत हैं, चार पाँच गीत ऐसे हैं जो पुराने गीत हैं और वो दोबारा जो है ना उन्होंने रीमिक्स किए हुए हैं. और मैं कहता हूँ कि क्या बात है. वो यहाँ पर सिस्टम में नहीं है. कभी ये भी ना पूछे कि

वो लगा दें क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी जो हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर यू वो जो गीत होंगे वो आपके लिए पेश करूँगा, क्योंकि वो जो गीत है वही हो जब भी सुने ना, ये इतना मशहूर गीत हुआ है, इतना मशहूर गीत गीत हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर सकेंगे, इतना मशहूर हुआ है कि उन्होंने उसको रीमिक्स कर दिया। और ये देखो कमाल की वो बात हो रही है ना, क्या हाल है, और क्या कहते हैं हमने ट्रेंड सेट कर दिया, और क्या कहने क्या कहने, एनी वे नॉट टू वरी। और यही होता है, और अच्छा गीत जो ना वो पेश करने चाहिए, और अच्छे गीतों के जो क्या कहते हैं कि जो लिरिक्स हैं उनको सुन के पेश करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नायाब हैं। और आप सोच रहे होंगे यार ये कौन किस गाने की बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, चलो ये भी आपको हम बताएंगे वो कौन सा गीत होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्यों हमारे कम्युनिटी जो ना वो मेरे साथ थोड़ा मस्ती मौज में है, तो उनको थोड़ा जो मस्ती मौज करने दो ना, क्या हाल है। मैं कहता हूँ कि आप खुश हैं हमारी खैर है, क्या हाल है, आप क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पंजाबी में, तो इसकी चले जाओ तो साड़ी खैर है, क्या हाल है, वो मैं अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा जो वैसे लोग करते हैं, और तुखी चले जाओ तो साड़ी खैर है। और चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो कम्युनिटी जी आप तैयार हो गए, और आप तैयार हो, और क्या कहते हैं कि यार ये मसले क्यों करते हैं मेरे साथ। एनी वे यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करनी है, ब्रेक के फ़ौरन बाद वो गीत होगा, और बहुत ही नायाब गीत होगा, बहुत ही खूबसूरत है वो गीत, सब दोस्ती ने उसको गीत गुनगुनाया है और उस गीत को कमजाब बनाया है, और ये वो गीत सब ने गाना जो गुनगुनाया है, और क्या कहेंगे उसके बारे में। और वैसे जो गीत है बड़ा ही ज़बरदस्त गीत है, और मधुबरी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, वन एंड ओनली वन महरूम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है। और वो गीत कौन सा होगा वो मैं शला चल यू द ट्रक और शला जस्ट लीव इट। आपने क्या करना है कि आपने मेरा साथ देना है, ठीक है ना, वो जब आप मेरा साथ देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, पता लग जाएगा कि वो कौन सा गीत है। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, कीप इट लॉक्ड।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

Oh, wow, what an amazing track. That was one of my all-time favorite गीतों में. जैसे मैंने कहा कि ये गीत जो ना बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही नायाब गीत है, और हमेशा मैं पेश करता हूँ. दो तीन ऐसे गीत हैं जो I enjoy them track as well. Anyway, moving on to another beautiful track, और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. हमारे मोहतरम अब्दुल कयूम साहब हैं हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. हमारे मोहतरम हैं चौधरी फरियाज साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मदरसा कियानी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. बानो जी हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. और वाजिद भाई हैं, ये गीत आपके लिए गया. और हमारे गिदन भाई हैं, गुरु जी हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. हमारी पापी जान हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. चौधरी मनीर साहब हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. और यही गीत में पेश कर सिमी जी हैं, नौशीन जी हैं और उनकी जो सखी सहेलियाँ हैं उनके लिए गीत होगा. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. वाजिद भाई और आपकी पूरी टीम के लिए होगा. और नंबर एंडिंग 3001 ये गीत आपके लिए. सोनिया जी ओल्ड बे फ्रॉम बर्मिंघम, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे. डॉक्टर मलिक साहब हैं, उनके लिए और पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमारे समन वेरी वेरी स्पेशल टू समन वेरी वेरी स्पेशल गीत आपके लिए होगा. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और मुझे अच्छा लगा. और चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, रश दिल से हैं. और क्या कहने जी, क्या कहने. और हमारे मोहतरम राय अजहर हुसैन साहब हैं, स्कॉटलैंड में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है. और क्या कहने, वाह जी स्कॉटलैंड में जो आ हा हा, क्या मौसम है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है. और लाजवाब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं और बजोक लोगों की मजोक महफिल है. और क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लग रहा है. और थैंक यू वेरी मच. और कहते हैं ना कि एडिनबरा वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, एडिनबरा जो ना मेरी फेवरेट प्लेस है. और स्पेशली जो प्रिंस स्ट्रीट है और वहाँ पे मैं शॉपिंग करता हूँ वहाँ पे. और क्या क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत है. एंड दैट स्ट्रीट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीट, जैसे लंदन में है. और एल्फर्ड है, एल्फर्ड लेन है. और क्या कहने जी, क्या कहने, वाह क्या कहने. एनी वे नॉट टू वरी, ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन आप इन्जॉय करेंगे. और ये गीत जो विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़, देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है और आज कहां पे जा रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं. व्हाट इज योर बीफ प्लान फॉर द बीफ इवनिंग. इफ यू ड्राइविंग, ड्राइव विद अ केयर एंड विद आउट एंड अबाउट, स्टिक अराउंड विद सिमिलर रेडियो. एंड इफ यू आर कुकिंग अवे, द नेक्स्ट ट्रैक इज गोना गो आउट टू यू एज़ वेल. एंड इफ यू आर जॉगिंग इन द पार्क, ये गीत आपके लिए होगा और जो सुनने वाले के लिए होगा. ऑल द खामोश लिसनर्स, ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स, एंजॉय.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM, across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes. में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है और वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी सून इज गोना बी लॉन्चिंग इन मिडलैंड्स. आर यू लकी गाइस? और क्या कहने जी, क्या कहने. एंड नॉट फॉरगेटिंग www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. दैट्स इट ऑल अबाउट. और यहां पे हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 8:09 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked and keep it locked down with the power of his gun. और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा और हमारे साथ देखो यहाँ पे कौन है हमारी महफल में. और क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने. यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं और वाह जी वाह, वाह वाह यहाँ पे.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सुनने रेडियो और यहाँ भी हमारा साथ देने लाइव कॉल का सिलसिला है और वन एंड ओनली वन आप दोस्तों के लिए सरप्राइज है यहाँ पे, वो कौन और कहाँ से हैं। वैसे तो हमारा साथ दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको पहले लेके जाएं और उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे इनके लिए ये और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम,
0: बिस्मिल्लाह करा। ओ बिस्मिल्लाह जी आने खुश आमदीद सोने दे मनमोनी हो, के हाल चाल है? ठीक ठाक हो? से ठीक है
1: जी बाबा। मैं आरता के तुसानिया दुआवां ने
0: फोन किया, दुआ करने मदरसियानी साहब दे माशाल्लाह, उन्होंने पूरी जिहड़ी दोस्त उन्होंने दुआ की है, अतीका साहब है उन्होंने दुआ की है, माशाल्लाह नशीन जी हैं, सिमी जी हैं और सब में किस किस का डॉक्टर मालिक साहब हैं और फर्दन फर्दन सब ने आपके लिए दुआएं की हैं। हमारे शकील साहब हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पे, सब ने आपके लिए दुआएं की हैं, खसूसन दुआएं की हैं। तो वैसे तो हमारा साथ अतीका साहब दे रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको पहले लेके जाएं कि आप दूर से फ़ोन करते हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान से फ़ोन करें तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं होल्ड करती हूँ तो आपको लेके जाएं। देखो ये होती है खूबसूरती।
1: चलो मेरी बहन ना बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी,
1: अल्लाह उन्होंने सलामत रखा, उन्होंने मौका देता
0: जी।
1: आज परवेज पापा मेरी सेहत भी काफी खराब थी, नाल उससे एक और बड़ी परेशानी थी, मेरे बड़े भाई भी जो है ना वो भी बीमार हो गए थे और साल दाखिल ने, एक पास मेरी सेहत थी, एक पास मेरे अपने भरा की बीमारी का सी, एक पास तुसा सारिया का खलूस से मोहब्बत प्यार सी, मैं इन्होंने दोवों नु तकरी च रखिया।
0: पिछले हफ्ते ने माशाल्लाह सब ने माशाल्लाह रिल मिल के दुआएं की है, सारी माँ जी है उन्होंने खुसूसी ने आपके लिए दुआएं की है और हमारे डॉक्टर मालिक साहब उन्होंने उन्होंने की सब ने कहे और वही बात हो रही है मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पे। और देखो ये होती है जब मैं कहता हूँ आप हमारी फैमिली हो और यही मकसद है, यही पैगाम है कि आप सब हमारी फैमिली हो, खुशी हो या गमी हो
1: जी
0: जी
1: जी। मैं सोचना मैं किस तरह सुसाना फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करा, टाइम ने थोड़ी कमी होनी है वरना मेरा दिल करना, यकीन करो
0: प्रोग्राम आए हो शामिल हो शिरकत की ने तो तुसा अपने दोस्तों ने सब ने ना किनो तो इसने कोई पाबंदी नहीं मारे भरा मारे भरा प्रोग्राम तो तुसा ना किन किन्ने हो तो कोई मसला नहीं है
1: ते... सारे यकीन करो मेरे वैसे सारे काबिल इहतराम
0: जी,
1: लेकिन कुछ होना वाकई सही है के कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जो मेरा बहुत प्यार रखने ने
0: जी,
1: हमेशा मेरे वास्ते दुआएं भी करने ने
0: जी,
1: मैं किस तरह मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करा।
0: वाह क्या बात
1: है, मेरी दुआ उन्होंने वास्ते ने अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा सलामत रखन
0: जी
1: और उन्होंने दरमियान जरा ये मोहब्बत प्यार खलूस
0: ऐसे ही रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे और ऐसे ही कायम दायम रहे जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चौधरी साहब मैं निकी जी ब्रेक करनी है तुसा माइंड ना करे, एक मिनट ब्रेक है ठीक है ना, एक मिनट ब्रेक है, ये ना मैं कंप्यूटर में की फाइन करी होड़ा ठीक है, ये बड़ा मसला है ठीक है, तो इतने निकी जी ब्रेक करनी एक मिनट ब्रेक है ठीक है ना चौधरी साहब, तो फिर रामे लगे ना कि नहीं ठीक है ना, तो क्योंकि मैं टाइम के साथ चलने वाला हूँ और टाइम के साथ चलूंगा और क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम कर चुका हूँ और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन क्योंकि मुझे जो ना देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो भी हैं आर्ट ब्रेक हैं क्योंकि हमारे जो जो एडवर्टाइजर हैं वो पे करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए तो वो टाइम के साथ पेश करनी चाहिए, तो वो मेरा हक भी है हमारा फ़र्ज भी है और सुनने रेडी का यही खलूस मोहब्बत है प्यार है सबके लिए की बिलक्ट।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
4: क्योंकि सोने बिछाई महंगाई मैं चांदी ले आई।
5: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ कांटे अंगूठियाँ हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डॉकवर्थ लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन नंबर 01274491442।
0: Welcome back, you're listening to Radio 103.2 FM और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त है चौधरी फरियाज साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा,
0: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी,
1: और तुसाने पूरी महफिल वास्ते लाख करोड़ वाली बिस्मिल्लाह करा,
0: बिस्मिल्लाह
1: जेड़े सारे सुनने ने जेड़े सारे आन के
0: जी
1: जितने सारे संगी दोस्त ने सबा की सलामत
0: रखन
1: जी ने बहुत बहुत सलाम बेहद शुक्रिया खलूस है कुलसुम जी ने सीमा जी ने और शाहपरी जी ने रेखा जी ने सारा जी ने भाभी साहब ने गिजर भाई ने फरजाना जी ने साइमा जी ने सबा जी
0: जी
1: सब अर्जू जी रुखसाना जी सोनिया जी सब इन्होंने सब की मेरा बहुत बहुत सलाम सब बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: मोहतरम अमर भाई ने महबूब लाई साहब ने
0: जी
1: मुदसर भाई ने जहांगीर साहब ने मुदसर भाई थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा से याद करने हो करने हो अल्लाह पाक की सलामत
0: रखा शुक्रिया अदा करे टीम है ना जी
1: जी उन्होंने पूरी टीम ने बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी
1: जाहिर है संगीत दोस्त होने ने जिले अस सुनने ने
0: चौधरी
1: मनीर सिंह ने
0: जी
1: मेरा सलाम
0: जी
1: शकीर साहब ने हीरा साहब ने वाजिद भाई ने अयूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई ने
0: जी
1: अब्दुल करीम भाई ने नवीद राणा साहब ने हमेशा से याद करने ने जनाब तारिक अकबर साहब ने काफी दिन बाद सबसे सलाम दुआ हुई है
0: उन्होंने
1: ममता ना शुक्रिया चौधरी मुजफ्फर साहब ने सारे बड़े दोस्त
0: जी
1: चौधरी आसिफ रियासत साहब ने और डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने हमेशा असि याद भी करने ने आने ने यरा हुक्म करो कोई फरमाइश करो असा ना हुक्म नहीं है सारी अर्ज यही है सारा जिस तरह खलूस करने होना
0: जी
1: असा वैसे यही बहुत कुछ है
0: वाह जी वाह क्या कहना
1: है पूरी टीम की सारा सलाम है
0: जी
1: चौधरी रुखसार साहब ने एम खान साहब ने नदीम मंसूर साहब ने राजा हुकास साहब ने जजुल कुमैन चौधरी मनीर सैन ने
0: जी
1: मेरा भरा और जफर अली रो साहब ने महमूद साहब ने राजा शोएब साहब ने और भी जितने संगीत साथी ने सबा की मेरा बहुत बहुत सलाम सैयद असान साहब ने और जितने भी है ने सबा की मेरा बहुत बहुत सलाम
0: जी
1: बड़ा खूबसूरत शेर बिस्मिल्लाह करा
0: बिस्मिल्लाह
1: लिखने ने के केड़ी सिफत केड़ी सिफत दी मैं सना आखा
0: क्या कहने
1: केड़ी सिफत दी मैं सना आखा रब ने सिफतां भरियां चुन चुन के
0: वाह
1: मजा खवां खुद रब रहमान तेरा गांदे गीत फरिश्ते कुन कुन के जदू जावे तू आका मेराज दे वल पूरा तेरे फिर रख दिया ने बुन बुन के लखा यूसुफ जलेखा रहीम मासून شفتہ میرے محمد نے یہاں سلطن
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے
1: مجاہد نے رنگ
0: جی جی
1: تو بڑا خوبصورت شعر
0: جی
1: لکھنے نے کہ اساں تے تیرے پیار وچ اپنا آپ گوا چھڈیا
0: واہ واہ واہ واہ واہ
1: اساں تے تیرے پیار وچ اپنا آپ گوا چھڈیا
0: واہ
1: تیرے ولوں رہ گئے گل اساں تے سر الا چھڈیا
0: واہ
1: جس ویلے عید دا نکاح ہونا گانا تے وہ
0: جی
1: عید مائی عید نکاح نہیں سی نا پڑھتی
0: جی
1: مولوی حضرات کہندے نے انہاں دے سر پور کے نا پڑھ کے نا تے
0: لاؤ نکاح ہو جاتی جی
1: وہ کہندے نے تیرے ولوں تے رہ گئی گل
0: جی
1: اساں تے سر الا چھڈیا کیدو ورگے پیار دے ویری ساشتاں کردے رہ گئے
0: ہائے ہائے ہائے ہائے
1: کیدو ورگے پیار دے ویری ساشتاں کردے رہ گئے
0: واہ
1: ایر نے پی کے زہر پیالا پیار نو امر بنا چھڈیا
0: واہ کیا کہنی
1: آخیا کچا کڑا چنا وچ شوکا کاتر سیا نیری رات کیتی جانا والے رب دے وعدہ یار نبا چھڈیا
0: بہت خوب بہت خوب
1: پیار شیرین دا سی پیسا بن کے ہاتھ پر آج دے آیا خسرو دے دربار وچ ممکن دا ترانہ گا چھڈیا
0: واہ واہ واہ
1: ویری پنوں نو لے کے ویری پنوں نو لے پنوں نو لے کے آلک آلی کیج شہر نو ٹر پے سچی لے کے سچی نے ریت والے تلاں وچ عشق دا بوٹا لا چھڈیا
0: واہ چھڈی صاحب واہ
1: پیار نہیں ملدا وچ خیراتاں دے پیار ہے نا آزاداں دا ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਬਨ ਕਾਸਾ ਲੈਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਛੱਡਿਆ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
1: ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਡਾਢੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋਗੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਾ ਛੱਡਿਆ
0: ਵਾਹ ਚੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
1: ਇਹ ਆਤਮ ਖਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ
1: توبہ
0: اس زمانے میں آنا سی
1: ستم گار معصوم کلاونا سی
0: واہ چلی صاحب
1: توبہ اس زمانے بھی آمنا سی ستم گرا معصوم کلاونا سی ظلم ستم نشانہ بنائی رکھیا جس دے ہجر نے سولی چڑھائی رکھیا کہندا یاد ہو سانو تو سا پھول گئے ہو
0: سنی پھول گئے واہ چلی صاحب
1: جس نے مکتی کنڈ کدی کھولیا نہیں جس نے مکتی کنڈ کدی کھولیا نہیں ترلے کرا تو جوڑا کدی بولیا نہیں جس نظر غریب والے چاہی نہیں جس وے درد نے سنی سنائی نہیں کہندا یاد سانو وہ تساں بھول گئے ہو
0: ہائے ہائے ہائے ہائے
1: اس بے رحم وچ رحم کدی آیا ہی نہیں میں بلاواں نہ بولے بلایا ہی نہیں میریاں ہاواں دی نہ پرواہ سمجھے میرا نام جو لینا گنا سمجھے کہندا یاد سانو وہ تساں بھول گئے ہو جسے پیار نے پاگل بنا دیتا توبہ توبہ خدا بلا دیتا اس ظالم نے آج پیغام کلیا پلن والے آسم میرے نام کلیا کوئی کہندا یاد سانو تساں بھول گئے ہو
0: ہائے ہائے ہائے واہ چوری صاحب
1: آخیا پتا چلیا اج کدھرے پیار ہی نہیں پتا چلیا اج کدھرے پیار ہی نہیں ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ
0: ਵਾਹ ਚੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
1: ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਸਿਲਾ ਵਫਾ ਉਸ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੋ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਸਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਸਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰ ਜੀ ਜੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿੰਦਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੋ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬ ਨਾ ਝਾਤ ਬਖਸ਼ੀ
0: ਉਹ
1: ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ
0: ਵਾਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਿਆ
1: ਆਸਮ ਚੱਕ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੋ ਆਸਮ ਚੱਕ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੋ ਅਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਬਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ
0: ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਚੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
1: ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ
0: جی
1: علی حمزہ صاحب نے
0: علی حمزہ صاحب نے
1: مانی لوگ عید کی خوشی وچ مست ہوئے
0: واہ
1: لوگ عید کی خوشی وچ مست ہوئے رو رو ساڈیاں کرن فریاد عیداں
0: واہ
1: اسا مالک ہاں بختاں بیچاریاں دے کرتی ساریاں کون آباد عیداں
0: ہائے ہائے ہائے
1: ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਸੁਰ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਹੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਈਦਾਂ ਉਹ ਲੰਘਸਨ ਕਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਦਾ ਯਾਦ ਈਦਾਂ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਿਆ
1: ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਸਨ
0: ਵਾਹ
1: ਯਾਰ ਤੇ ਈਦ ਕਰਸਾਂ
0: ਹਾਂ
1: ਜਦੋਂ ਮਿਲਸਨ ਯਾਰ ਤੇ ਈਦ ਕਰਸਾਂ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਈਦਾਂ ਖਬਰ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ
0: ਵਾਹ
1: ਖਬਰ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸਨ ਦਿਲਦਾਰ ਈਦਾਂ
0: ਬਹੁਤ ਖੂਬ
1: ਸਾਡੀ ਈਦ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਈਦ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ
0: ਗੁਜ਼ਰੀ
1: ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਵਾਰ ਈਦਾਂ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਈਦਾਂ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
1: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦਾ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦਾ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਕ ਅਜ਼ਲੋ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਬਹਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
0: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
1: ਮੰਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੰਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ
0: ਵਾਹ
1: ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਾ ਗੁੰਗਟ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਭਰੋ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਨਕਾਰ
0: ਭਰੋ ਵਾਹ
1: ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਵਸਲ ਤੇ ਆਸੀ ਜ਼ਖਮੇ ਪਿਆਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
0: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ
1: ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ
0: ਜੀ ਜੀ
1: اللہ
0: سونے والا ہے اللہ سونے والا ہے بڑا خوبصورت پاپے بڑا خوبصورت انداز ہے بڑا ہی خوبصورت شاعری اور تشن انداز ہی بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ اس لیے سب پیار کرنے ہیں پرا بڑی مہربانی تو شکریہ ہاں آئے ہو تو دل باغ باغ ہو گیا دل گارڈن گارڈن ہو گیا پاپے ٹھیک ہے نا تو بڑی جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں دل پر رہا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے کمال ہی کر دی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی دل پر رہا نہیں ہے تو تم دوبارہ چینج خبر میں ہوں تک نہیں کیا کرو کیا سٹوری ہونی ہے ٹھیک ہے نا تم بڑا ہی اپنا خیال رکھو تو جی ٹائم پہلے تو آئی جائے تو بڑی تھوڑی مہربانی تھینک یو تو ڈاکٹر صاحب بڑا ہی واہ واہ کرنے پہ نے بڑی مہربانی مہربانی بڑی مہربانی سر بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے بڑی مہربانی سر رب رکھا بہت بہت رب رکھا واہ کیا کہنے جی کیا کہنے اور بہت ہی اچھا لگا کہ آپ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور یہاں پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا اور کیونکہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور یہاں پہ چھوٹی سی بریک کریں گے بریک کے فوراً بعد عتیقہ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ان کا بھی اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کیپ اٹ لاکڈ ٹو دی سن رائٹ ریڈیو
6: کوئی پرونٹھے شرونٹھے نہیں ملن لگے کچن وچ سارا سامان مکیا پیا ہے آٹا چاول دالاں گوشت سبزیاں ہر چیز لین جاؤ تے ادھا دن لگ جانا ہے
7: تسی فکر اے نہ کرو جی ہنے اے ایشیا سپر سٹور جانے تے ساری شاپنگ کر کے لے آنے انہاں نے نوی برانچ بھی کھولی ہے جتھے ہر قسم دا کچن تے گھریلو سامان بڑی مناسب قیمتاں تے مل جائے گا اور گوشت بھی اوتھوں ہی لواں گے
6: واہ جی چلو پھر آ کے پرونٹھے بھی بنانے نہیں
7: ایشیا سپر سٹور ساؤتھ فیلڈ روڈ بریڈفورڈ 5 ٹیلی فون 01274464446
0: Right, welcome back. Listening, you're listening to Sunna Radio 103.2 FM. اور یہاں پہ ہمارا ساتھ دینے عتیقہ صاحب ہیں آل دا وے فرام مانچسٹر سے بہت بہت شکریہ ان کا جنہوں نے ہولڈ کیا یہاں پہ اور ہمارا ساتھ دیے بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ ہم کہیں گے ویلکم جی ہیں کہیں گے خوش آمدید کہیں گے سات بسم اللہ کہیں گے یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کیسے طبیعت اچھی جگہ سے ٹھیک ہے آپ کی
8: جی سب اللہ کے شکر ہے الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ہمارے چودھری فریاض صاحب کا اور انہوں نے آپ کو پہلے آپ تھی تو آپ نے کہا کہ ان کو پہلے لے کے جائیں تو یہ بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ
8: بات نہیں وہ فریاض بھائی بےچارے ویسے بھی ان کی صحت اتنی ٹھیک نہیں پھر بھی وہ آئے ان کا بہت شکریہ بہت خوبصورت شاعری سنائی
0: بڑی کمال کی شاعری کہتے ہیں بڑی خوبصورت
8: بہت ہی اچھا لگا
0: جی
8: تو اللہ باغ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہیں اور آتے رہیں اور اتنی خوبصورت شاعری سناتے رہیں ان کا بہت شکریہ
0: ماشاءاللہ
8: تو سب سے پہلے تو سب اس رنگ محفل کی ساری ٹیم کو سلام
0: ماشاءاللہ
8: جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب ستارے اور چاند کو سلام
0: جی
8: تو خوبصورت سانگ جو آپ نے لگائے
0: جی
8: وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہی خوبصورت سانگ تھے
0: واہ
8: और बहुत अच्छा लगा
0: जी।
8: तो आप इतने अच्छे सॉन्ग सुनाते हैं, चूज करते हैं और सबको, इनका दिल भी बाग बाग हो जाता है।
0: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
8: बहुत शुक्रिया आपका
0: जी।
8: तो हमारी सिक्की सहेलियां सुमित्रा जी और गिदर भाई हैं
0: जी जी,
8: तो उनको नमस्ते, वो लास्ट टाइम नहीं आए थे।
0: हाँ,
8: तो
0: हमने उनको मिस किया है और डेफिनेटली उनको मिस किया। आज वो कह रहे थे कि हमने धमाका करना है और धमाका करेंगे, और वो गाना लेके आ रहे हैं और क्या कहेंगे उनका इंतजार करेंगे थोड़ी देर के बाद। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मामू रफी साहब, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूं, ममनून उनका
8: जी। वो भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं
0: जी।
8: तो सब जितने भी लोग आते हैं, मेरे ख्याल है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि
0: जी, एक से बढ़कर एक कॉलर है। असली में कहता हूँ ना कि ये फूलों का गुलदस्ता है और ये एक से बढ़कर एक है, फूल है माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आए हैं और जो आने वाले हैं जी,
8: सबको सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
8: तो हमारे रेखा जी हैं, नुशीन जी हैं, शाहपुरी हैं, सलीना जी हैं, और आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, चौधरी फरियाद साहब हैं, और जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, उनका भी इंतजार रहेगा
0: जी।
8: पापा जी हैं, शकील जी हैं, वो उनकी भी खूबसूरत शायरी सुनने को मिलेगी। सलीम भाई हैं
0: जी,
8: और मुदस्सर कियानी साहब हैं, बहुत अरसे से उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो वो भी आए तो अपनी आवाज़ सुनाएं। अब्दुल कयूम साहब हैं,
0: आज अब्दुल कयूम साहब आएंगे, और माशाल्लाह उनकी भी गैर हाजिरी लगी हुई है, और वो भी आज आएंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ हमें सुनाएंगे और गाना भी सुनाएंगे आज, क्या कहने उनका भी।
8: वो बहुत खूबसूरत शायरी उनकी,
0: बड़ी कमाल की, वाकई
8: बहुत कमाल की शायरी होती है, और उनके सॉन्ग बहुत खूबसूरत होते हैं,
0: बड़े हट के होते हैं गीत, बड़े प्यारे गीत होते हैं,
8: बहुत प्यारे गीत सुनाते हैं वो
0: जी।
8: बहुत शुक्रिया। सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, वाजिद भाई हैं
0: जी,
8: एफ ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, उनका भी इंतजार है
0: जी,
8: इंशाल्लाह वो भी आएंगे और खूबसूरत आवाज में सॉन्ग सुनने को मिलेगा।
0: वाह जी वाह।
8: तारिक भट्ट साहब हैं, राना नवीस साहब हैं, और चौधरी रुखसार साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, खलील सहेल साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
8: तो अभी तो दो मिनट के बाद मेरे ख्याल में अजान का भी टाइम होगा।
0: हाँ जी जी, टाइम होगा इंशाल्लाह जल्द, और यहाँ पे हमने अजान भी पेश करनी है, मगरिब की अजान पेश करेंगे, तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड कर लें प्लीज, तो उसके बाद फिर जो ना हम सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे लिए और सबके लिए अजान बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम को देखें और ये आपने मुझे भी तला कर दिया और मुझे भी बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अजान ब्रेक होगी, क्योंकि अभी टाइम है, और मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे भाई हैं और बहुत अच्छा लगा वो प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। मेरे भाई आवाज़ अब ठीक आ रही है आपके पास, आ रही है आवाज़, और मुझे आपने बता देना है कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजिंग की है, तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और डू लेट मी नो एज़ वेल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो सुनने वाले हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, क्योंकि मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अजान पेश करनी है, मगरब की अजान ब्रैडफोर्ड यूके में, और अपने अपने मकामी टाइम टेबल को देख के आपने नमाज अदा करनी है, और मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी है, खासकर जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करनी है, और जो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और हज का जो बरकत महीना है, उन बरकत का दिन उन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जो हाजी वापस आ चुके हैं, वो आने वाले हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ अगले हफ्ते आएंगे माशाल्लाह, और ये खूबसूरत ये जो ना आहा सदके जमा, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके जो जाने वाले हैं उनसे मुलाकात करें, पहले दिन ही मुलाकात करें, जो 10 दिन होते हैं ना पहले 10 दिन, वो उनके साथ मुलाकात करना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रवानी होती है, बहुत ही खूबसूरती होती है, और जो भी आज ही वापस आ चुके हैं माशाल्लाह, हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है माशाल्लाह, और यहाँ भी हमने क्या करने का, मालिक मीर जी मुझे कह रहे हैं हेडफोन में, मुझे कह रहे हैं कि अब अभी टाइम हो चुका है, तो यहाँ भी हमने अजान पेश करनी है मगरब की, और ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो हमारा साथ दे रहे हैं, जज़ाकअल्लाह खैर है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। यहां पे लाइव कॉल का सिलसिला है और हमारा साथ देने अतीका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी बिस्मिल्लाह।
1: शायरी है कुछ,
0: जी जी,
1: सबके नाम करेंगे।
0: जी जी।
1: तो अपनी सखी सहेलियां सुमित्रा जी और गिदर भाई के नाम भी करेंगे।
0: जी।
1: उनको बहुत मिस किया है जब वो लास्ट टाइम नहीं आए।
0: हमने बहुत ही मिस किया है वाकई।
1: तो उनके लिए भी ये शायरी है।
0: जी।
1: और सबके लिए। उदास रातें, उदास मौसम, रुला रहे थे तो तुम कहाँ थे। हमारे जख्मों को हम ही मरहम लगा रहे थे तो तुम कहाँ थे।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: हमारे जख्मों को हम ही मरहम लगा रहे थे तो तुम कहाँ थे। हमें खिजां रास आ गई है तो अब बहारों का क्या करेंगे।
0: वाह।
1: हम अपनी तन्हाई दूर करने बुला रहे थे तो तुम कहाँ थे।
0: वाह।
1: हम अपनी तन्हाई दूर कर

0: कहाँ थे।
1: वाह क्या कहने, बहुत खूब।
0: कितनी आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं
1: जाती। वाह जी वाह।
0: अब उम्र ना मौसम ना वो रस्ते ना वो पलटे,
1: बहुत खूब।
0: इस दिल से तो मगर खामो ख्याली नहीं जाती। मांगे तू अगर जहाँ भी हंस के तुझे देंगे,
1: वाह।
0: तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती,
1: बहुत खूब।
0: आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती।
1: वाह।
0: मालूम हमें भी हैं बहुत से तेरे किस्से,
1: वाह जी वाह।
0: पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती,
1: वाह क्या कहने।
0: हमरा तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में,
1: वाह।
0: अब शाम वही दर्द से खाली नहीं जाती,
1: वाह।
0: हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती,
1: वाह।
0: आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती,
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती,
1: वाह।
0: शो के रख से जब तक उंगलियां नहीं खुलती, ये शायरी मुझे मेरी बहुत पसंदीदा शायरी है
1: जी जी।
0: शो के रख से जब तक उंगलियां नहीं खुलती, पांव से हवाओं की बेड़ियां नहीं खुलती।
1: वाह वाह क्या कहें, बहुत खूब।
0: पांव से हवाओं की बेड़ियां नहीं खुलती,
1: बहुत खूब।
0: पेड़ को दुआ देकर कट गई बहारों से, फूल इतने बार आए खिड़कियां नहीं खुलती।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: फूल बन के सैरों में और कौन शामिल था, शोखी सबा से तो बालियां नहीं खुलती।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: हुसन के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: कोई मोजाए शीरी चूम कर जगाएगी, सूरजों के नेजे से सिप्पियां नहीं खुलती।
1: बहुत खूब।
0: माँ से क्या कहेंगे दुख हिजर का खुद पर भी,
1: वाह।
0: इतनी छोटी उम्रों की बच्चियां नहीं खुलती।
1: वाह जी वाह बहुत खूब।
0: शाख शाख सरगर्दां किसकी जस्तजू में है, कौन से सफर में है तितलियां नहीं खुलती।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: कौन से सफर में है तितलियां नहीं खुलती, आधी रात की चुप में किसकी चुप उभरती है।
1: वाह।
0: छत पे कौन आता है सीढ़ियां नहीं खुलती,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: छत पे कौन आता है सीढ़ियां नहीं खुलती,
1: वाह।
0: पानियों के चढ़ने तक हाल कह सके और फिर, पानियों के चढ़ने तक हाल कह सके और फिर, क्या क्यामतें गुजरी बस्तियां नहीं खुलती।
1: बहुत खूब।
0: शो के रख से जब तक उंगलियां नहीं खुलती,
1: बहुत खूब।
0: पांव से हवाओं की बेड़ियां नहीं खुलती,
1: वाह।
0: देखा है सब टटोल के पर दिल नहीं रहा, सीने में मेरे भी है, सीने में है मेरे भी अगर मिल नहीं रहा।
1: बहुत खूब।
0: देखा है सब टटोल के पर दिल नहीं रहा,
1: वाह।
0: सीने में मेरे है भी अगर मिल नहीं रहा।
1: बहुत खूब।
0: इसने नई कमीज पे गोटा लगा लिया,
1: वाह।
0: और हमसे एक चाक उधर सिल नहीं रहा।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
0: यानी स्याह हीरे हैं और उनके गाल पर, यानी स्याह हीरे हैं और उनके गाल पर, जिस तिल को मैंने बोसा दिया तिल नहीं रहा।
1: वाह।
0: कश्ते दिल उदास के यक्सर खिजा में है, मुद्दत से कोई फूल यहाँ खिल नहीं रहा।
1: बहुत खूब।
0: देखा जो सब टटोल के पर दिल नहीं रहा।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
0: सीने में मेरे है भी अगर तो मिल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत शायरी की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, डॉट वॉज अतीका साहिब, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, आप आए और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारा साथ दे रहे गिदिन भाई भी हैं, हमारी पापी जान भी हैं, मोहम्मद रफी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ हम जल्दी जल्दी करेंगे टाइम चेक।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time.
1: Well, right time in the studio is 44 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. Yahan pe nikki ji break, 30 second ki break hai, aur keep it locked.

0: और यहाँ
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
2: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewellers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.
0: वेलकम बैक लिस्टनर, यू आर लिस्टनिंग टू सुनर रेडियो और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं और वेलकम ने काफ़ी टाइम होल्ड भी किया हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई मोहम्मद रफ़ी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे उनको, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे उनको, क्योंकि ये इन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं साहब?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप आ गए और हमें और क्या चाहिए मेरे भाई?
3: बस मेरे लिए भी यही खुशी
0: है। वाजी वा, क्या
3: आपको सुन रहा हूँ और बड़ी बड़ी खुशी हो
0: जाए। माशाल्लाह, वाजी वाजी, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
3: और ठीक ठाक हैं
0: आप? अल्लाह पाक का शुक्र, आपकी दुआ दुआ आपकी दुआ,
3: अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: आमीन आमीन।
3: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम, उन पे लाख

0: सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे हमको नाज है, वही जिस पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है, परवेज खान जी आप ही की तो वो आवाज है।
1: हाय हाय हाय हाय सदके,
0: हाय मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया
1: मेरा, चाश आ गया जी, मजा आ गया जी, दिल वाकई गार्डन गार्डन हो गया, क्या कहते
0: हैं। और ये फरमाइश करने वाले हैं आप परवेज जी, साहिल बाबी सेबा, सिमी बैंड, डॉक्टर हिम्मत कुमार, डॉक्टर बशीर पाशा, नर्स फरजाना, नर्स जूली
1: जी,
0: तो पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ
1: जी जी।
0: इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस बड़ी

0: भरी दुनिया में
1: क्या कहना,
0: लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम है के हंसे भी तो गुजारा न हुआ इस बड़ी दुनिया में
1: क्या कहें।

एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। इस

0: लगाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता।
1: वाह,
0: गिराना ही था तूने आंसू समझ करे, गिराना ही था तूने आंसू समझ करे, आंसू समझ करे, तो नजरों में हमको बसाया न होता, तो नजरों में हमको बसाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। मुकद्दर में है गर यही रुसवाइयां, मुकद्दर में है गर यही रुसवाइयां, तो मैं फिल्म तेरी में आया न

0: ने हमको मिटाया न होता। अगर तेरे दामन की हसरत न होती, अगर तेरे दामन की हसरत न होती तो यूं जिंदगी को रुलाया न होता, तो यूं जिंदगी को रुलाया न होता। जमाने ने हमको मिटाया न होता, अगर दिल किसी से लगाया न होता, लगाया न होता, लगाया न होता। मैनी थैंक्स सर,
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू वेरी मच। यू नो सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक यू हैव डन, बहुत बहुत शुक्रिया का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लाफेज लाफेज राइट, दैट वाज हमारे महमूद रफी साहब, कमाल ही करते हैं और कमाल ही कर दिए इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और जाकला खैर के आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, और गुरु जी हैं हमारा साथ दे रहे हैं। और क्या कहने गुरु जी की, होए होए होए क्या कहने जी, गुरु जी आ गए और छा गए, और यहाँ पे उनके लिए ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: वालेकुम सलाम भैया।
1: मेरे भाई जान कैसे तबीयत, आप ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
2: बस खांसी है यार।
1: हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, नजर लग गई ने आपकी? देखो ना, आप हॉलीडे में गए हुए थे, हॉलीडे में गए और नजर लग गई ने, वहाँ पे आपने एंजॉय किया होगा, और वहाँ पे ठंडे ठंडा ठंडा मौसम जी। जी मैंने कहा कि आप हॉलीडे में थे और आप वहाँ पे आपको ठंडे ठंडे ठंडा ठंडा मौसम आपने एंजॉय किया होगा।
2: नहीं अच्छे थे उधर तो।
1: अच्छा
2: इधर की तरह? हाँ गर्मी अच्छी थी उधर।
1: अच्छा अच्छा अच्छी थी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने। इसका मतलब है आपने एंजॉय किया, वेदर को एंजॉय किया, आपकी बर्थडे को एंजॉय किया, और हमने यहाँ पे आपको मिस किया।
2: अच्छा हाँ, नहीं तो क्या हुआ, क्या
1: हुआ, क्या है कि आप आए नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मलाल हुआ है, दुख हुआ है कि हमारे भाई कहाँ चले गए।
2: ना ना
1: जो
2: मुझे भी मालूम नहीं था
1: जी किधर
2: जाना है।
1: हाँ देखो
2: ये अरे हम तो हॉलीडे में थे स्कॉटलैंड में, हमें भी मालूम नहीं
1: था। हमें भी मालूम नहीं था। जी
2: हम मेरी बर्थडे की सरप्राइज थी ना।
1: हाँ ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया,
2: मुझे मालूम नहीं था।
1: जी जी जी, ना ना अच्छा अच्छा हुआ जो आपने सरप्राइज बर्थडे ली है, हॉलीडे गए आपने एंजॉय किया, फैमिली के साथ आप गए और अच्छा ही लगा माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ आपके ग्रैंड चाइल्ड बच्चे थे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, क्या कहने जी।
2: सब सब कहना पूरी फिल्म में। अच्छा तो सबसे पहले मैं शकील भाई को
1: जी, जी
2: बनने वाला
1: जी,
2: जलील मीर भाई को
1: जी,
2: मोहम्मद अनीफ भाई को, साजिद भाई को
1: जी,
2: हमारा उस्ताद चौधरी चौधरी साहब को क्या हो गया,
1: वो बीमार हो गए,
2: वो कल ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे देखना।
1: हाय हाय देखो ना, ये होती है पावरफुल दुआ होती, देखो ये होती है खूबसूरती,
2: वो एकदम ठीक हो जाएगा।
1: हाँ नहीं नहीं वही तो बात है ना, जो आपने कह दिया इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ में असर है, पावर है।
2: दिल दिल से करेंगे ना हम दुआ।
1: वाह जी वाह, ये खूबसूरती होती है ना, ये देखो।
2: उसके बाद हमारा सजा पहलवान है,
1: इकबाल
2: भाई है, पापा शफीक है
1: जी,
2: हमारा डॉक्टर मलिक साहब है, मोहम्मद रफी साहब आ गए, उसने बहुत अच्छा गाना,
1: बहुत खूबसूरत गाना गुनगुनाया जी जी।
2: उसके बाद हमारा फेवरेट परवेज खान भाई है,
1: माशाल्लाह क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
2: हमारी बहना समीर खान, समीना खान है
1: जी,
2: आसिया जी है, अतिका जी है, सलीना जी है, सिमी जी है, रेखा जी है, हमीदा जी है, सितारा जी है, मिस्टर मिसेस पटेल है
1: जी,
2: और अतिका जी का पूरा लिस्ट को, सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। और आपको हम ये कहेंगे कि आपको हम थोड़ा इंतजार कराएंगे, क्यों कि आप जब गाना सुनाएंगे तो वहाँ पे न्यूज ब्रेक आ जाएगी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और सब सुनने वाले फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे, ये क्या किया कर दिया आपने।
2: वो तो मुझे मालूम है आपको चाय पीना है तो
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, वो जो कमुटे
2: मेरे लिए भी भेज देना।
1: नहीं नहीं चाय नहीं, हम यहाँ पे चाय वगैरह नहीं पीते हैं, हम यहाँ पे काम कर करने के लिए आते हैं, वो काम करके चले जाते हैं घर। यहाँ पे हमारा
2: नहीं
1: क्योंकि यहाँ पे ना वो अभी जो है 57 मिनट हो चुके हैं, 58 मिनट, ठीक है,
2: हमें दिखाई नहीं देगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो हम पीते नहीं, हम यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हम पी खा के आते हैं यहाँ पे, और हमें वो क्या कहते हैं ना कि वो ये जो डॉक्टर का काम होता है ना, ये हम ये वही काम करते हैं, खा पी के आते हैं यहाँ पे, कोई ना गिला ना कोई शिकवा। क्या हाल है? तो आप थोड़ा होल्ड करें सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं गाना सुनूंगा, पूरा गाना सुनूंगा, तो आप गाना सुनाएंगे तो वो अधूरा हो जाएगा, तो जो मेरे सुनने वाले ना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हमें नाराज किसी को नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको भी स्पेशली आपको नहीं करना चाहता, ठीक है ना? आपके लिए ये वाह। और आप यहाँ पे होल्ड करेंगे क्योंकि अभी दो मिनट रह गए हैं कि न्यूज़ ब्रेक के लिए, और न्यूज़ ब्रेक के बाद हमने धमाका शुरू करना है दोबारा, क्योंकि वो जब गाना गुनगुनाएंगे तो ऊपर से न्यूज़ आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? अधूरा काम मैं नहीं करता हूँ, और मुझे आदत भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। क्यों देखो ये माशाल्लाह आ रहे हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, इनके जो गाने हैं आ हाय हाय हाय हाय हाय हाय, इनके गाने, इनकी शायरी, ओए होए होए। और आज हमारा साथ दे रहे हैं हमारे गिदन भाई भी हैं, हमारी पापी जान भी हैं, और हमारे मुर्शिद भी आ गए, वाह हाय हाय हाय हाय, क्या कहने। और दिल करता है यहाँ कोई गिद्दा शिदे पाऊँ, क्या हाल है, और बंगड़ा पाऊँ, क्योंकि हमारे मुर्शिद आ गए हैं, और हमें क्या चाहिए। देखो ये होती है खूबसूरती, जब मैं कहता हूँ ना मेरे अपने, मेरे सज्जन, ये सज्जनों की महफिल और सज्जन आ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आई विल डू अ क्विक रिमाइंडर, रिमाइंडर मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सनडे रेडियो जो ना एक इन बिगर ऑन बेच है, ऑन बिगर बिगर बिगर, और सनडे रेडियो इज 100.6 FM, 103.2 FM, सुना जा रहा है, और वेरी वेरी सून इन मिडलैंड में डीएबी प्लस ऑन सनराइज रेडियो गोल्ड, आई हाय सदके सदके। और यहां पे न्यूज ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड,
3: ब्रॉडकास्टिंग टू द एशियन कम्युनिटी 24 आवर्स अ डे, दिस इज सनराइज रेडियो ऑन द आवर एवरी आवर, दिस इज सनराइज रेडियो नेटवर्क न्यूज।
4: Constable says he doesn't think policing in the UK is anti-white.
5: Do we have a two-tier type policing system? I would refute that. I would say absolutely not. I see officers day in, day out on the grounds serving without fear or favour all our communities. And I think that's the case nationally.
4: Alexis Boone has apologised to the family of university student Henry Novak, who was murdered in Southampton in December. The 18-year-old was handcuffed as he lay dying after his Sikh attacker made a false allegation of racism. Keir Starmer says Nigel Farage's call for a rage response is unforgivable. A senior prosecutor in Northern Ireland says it's been absolutely chilling to watch a killer's fake live stream alibi. YouTuber Stephen McCullough is starting a minimum 31 years behind bars for murdering his pregnant girlfriend in County Armagh in 2022. Three people have died after a Royal Navy helicopter crashed in a field in Devon. It happened during a training exercise early this morning. The head midwife at one hospital has labelled the state of maternity care in England heartbreaking. Analysis of NHS figures reveals a growing number of traumatic births, with one in 35 women suffering a serious tear in the past year. A national investigation is underway. The government's new maternity advisor, Michelle Welsh, had an emergency C-section.
6: I was lucky. I walked out of the hospital with my son, and that is the word that actually is driving me on and on with the work that I do, because maternity care should never ever be about luck. It should be about safe and compassionate services.
4: Vladimir Putin's representative in the UK has been summoned by the Foreign Office after a Russian drone hit a building in Romania last week. Sir Keir Starmer called it a serious violation of NATO airspace. And world number one, Aryna Sabalenka, says she feels like quitting tennis. She's been knocked out of the French Open quarterfinals by 25th seed Diana Schneider. That's the latest. I'm Laura Safe.
7: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
8: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: राइट, वेलकम बैक लिस्टनर, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे गुरु जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम भाई जान।
0: माय जान कैसी है? मैं ठीक ठाक, उससे ठीक है आपकी मेरे भाई? अभी ठीक हो?
1: थोड़ा गला खराब है खांसी की वजह से।
0: जी जी,
1: फिर भी मैं कोशिश करता हूँ।
0: जी जी, गो अहेड। जी जी,

जाना मत उठ जाना, छोटी सी ये जिंदगानी रे चार, इनकी जवानी तेरी

0: टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना, छोटी सी ये जिंदगानी रे चार, इनकी जवानी तेरी, हाय रे हाय गमकी कहानी तेरी, छोटी सी ये जिंदगानी रे चार, इनकी जवानी तेरी, हाय रे हाय गमकी कहानी तेरी।
1: हाय हाय,
0: थैंक यू।
1: क्या वाह वाह वाह, मैं तो गाने में खो गया मेरे भाई। क्या खूबसूरत गाना आपने गुनगुनाया, बड़ा ही खूबसूरत गाना, मेरा फेवरेट गीत। वाह वाह, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, वाह क्या कहने, क्या कहने।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने गुनगुनाया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो आपने मेमोरी रिफ्रेश कर दिए। बड़ा ही खूबसूरत गीत है और ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, और क्या मूवी थी, क्या जबरदस्त मूवी। और कौन सा गाना लेके आई हमारी बाबी जान?
1: हेलो
0: बाबी जान, हाउ आर यू, आर यू गुड?
1: फाइन भैया।
0: वाह वाह वाह बाबी जान, बाबी जान, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडेज?
1: ओह यस, वेरी नाइस था भैया। वेदर इधर इधर जैसा वार्म था।
0: अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह, क्या कहें।
1: यूजुअली नॉर्थ में बहुत ठंडी होता है।
0: हाँ, बहुत ठंडी होती है। हमारे जो राय ना वो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं ना, वो हम स्कॉटलैंड में रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मौसम बड़ा खूबसूरत होता है,
1: बहुत बड़ा। उधर का इंसान भी बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा इंसान, तो सब अच्छे होते हैं अपनी अपनी जगह पे जी,
1: सब लोग।
0: हाँ, बहुत अच्छे, वो माइंड ओन बिजनेस के हेल वहाँ पे, और बड़े अच्छे है, बड़ा अखलाक, बड़ी अखलाकी।
1: उधर ईद भी मना रहा था, बहुत अच्छी।
0: हाँ हाँ हाँ, वो है ना, हमारे लोग वहाँ पे है ना, बहुत बहुत सारे हैं, वो हमारे एडिनबरा भी हैं और ग्लासगो भी हैं, माशाल्लाह काफी हमारी कम्युनिटी वहाँ पे भी है। जी जी,
1: उधर गिद्दर ने थोड़ा आपका मुस्लिम भैया मिला ने,
0: जी जी,
1: तो ईद मुबारक गिद्दर ने बोला है, तो इसको गले लगा कर।
0: हाँ देखो, ये होती है खूबसूरती, होती
1: इतना प्यार
0: है, इतना प्यार है, देखो ये होती है खूबसूरती, देखो ये होती है, माशाल्लाह, वाह क्या कहने, वाह।
1: हम जानते भी
0: नहीं
1: इसको।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे देखो, जब ये तो जब होता है ना, तो ये खूबसूरती होती है, हम रिल मिल के मनाते हैं ईद वगैरह, और जो भी त्यौहार होता है हम बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, डजंट मैटर व्हाट इट इज। जी जी, अखलाक हमारे साथ के अंदर है, माशाल्लाह खूबसूरत है। जी जी,
1: सबको मेरे तरफ से ईद का मुबारक भी है।
0: जी जी जी,
1: सबको हमने याद भी किया था,
0: माशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: मैं सबका नाम बोल देती हूँ पहला।
0: जी जी,
1: शकील भाई बल्ली वाला टाइम में होगा ना,
0: हमारे साथ है, वो हमारे साथ माशाल्लाह, वो हमारे साथ दे रहे हैं माशाल्लाह।
1: आज इसका लेट हो गया है वो भी।
0: जी
1: चलो
0: जी,
1: मैं स्पेशल शकील भाई को सलाम।
0: जी जी,
1: मलिक सलाम भाई को सलाम। मोहम्मद रफी भैया आज इतना अच्छा गाना गाया, इसको भी
0: बड़े बड़े खूबसूरत गाना गुनगुनाते, बड़े खूबसूरत। जी,
1: अजीत भैया है, चौधरी
0: फरियाद
1: भैया,
0: जी वो बीमार है जी, वो काफी बीमार है जी, उनके लिए आपने दुआ करनी है, जब भी आपने प्रार्थना करनी है ना, तो उसके लिए आपने दुआ करेंगे, ठीक है ना,
1: दुआ करेंगे।
0: जी जी जी, जब भी आप पूजा करेंगे उसके लिए दुआ करनी है हमारे भाई के लिए। जी
1: देखो, वो बीमार है तो भी
0: देखो मुझसे प्यार कितना करते हैं, देखो वो वहाँ से आता है माशाल्लाह, और रात के पहले इस वक्त बहुत ही काफी टाइम हो चुका है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो फिर भी वो मेरे लिए आता है, ये होती है खूबसूरती होती है भाभी जान। देखो वो बीमार है, बिलीव करें, वो हॉस्पिटल में आता जाता रहता है
1: भैया।
0: जी
1: भैया, आप
0: सुनते
1: हैं, ठीक हो जाएंगे, फिक्र नहीं करना।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: पहलवान भैया है, इकबाल भैया है, पापा सब भैया है
0: जी,
1: नदीम है
0: जी,
1: उसका सबको मेरा सलाम।
0: जी वालेकुम सलाम।
1: पहले मैं स्पेशल हमारा अतिका जी है, हमारे आशिया जी है
0: जी,
1: सलीमा सिंह जी, रेखा जी
0: जी,
1: हमीदा जी, सितारा जी, मैं जितना लोग आते हैं ना, सबको जो हमारा अतिका जी नाम बोले
0: जी,
1: सबका इसका सलाम।
0: वालेकुम सलाम जी।
1: चलो मैं टाइम कम है तो छोटा गा लो।
0: भाभी जान कोई मसला नहीं, एक गाना गाएं, दो गाएं, कोई मसला नहीं, हमारे जो शकील जो साहब है ना, उनका दिल बहुत बड़ा है, बिलीव करेंगे शकील साहब जो मुर्शिद हमारे ना, वो बड़ा, उनका दिल बहुत बड़ा है,
1: मेरे को पता है,
0: तो बहुत अच्छे इंसान है,
1: बल्ली वाला का दिल बड़ा ही होता।
0: वाह वाह जी वाह, क्या कहने, बल्ली वो उनका दिल जो ना, उनका बड़ा ही दिल है,
1: बल्ली गांव छोटा सा लेकिन दिल सबका बड़ा है।
0: वाह जी वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे इंसान है माशाल्लाह, बड़े प्यार करने वाले, बिलीव करें, और माशाल्लाह जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है शकील साहब की, माशाल्लाह बहुत ही प्यार करने वाले माशाल्लाह,
1: बहुत अच्छी बात करते हैं
0: जी,
1: बात भी होती
0: जी जी।
1: चलो मैं पहले छोटा ही गा लेती हूँ, चनक पायल बाजी का पुराना गाना।
0: जी जी,
1: मेरे दिल बता, मेरे दिल बता,
0: वाह
1: प्यार तूने किया,
0: वाह
1: पायल मैंने सजा,
0: वाह
1: क्या करूँ क्या करूं?
0: वाह वाह वाह,
1: क्या करूं क्या

0: तो खुशी के समंदर के देर रातिया किस्मत ने मुझे तुमने धोखा दिया, तुमको मोती मिले मुझको आंसू मिले, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरे दिल बता मेरे दिल बता,
1: वाह
0: तुम तो पागल रहा प्यार की आग में
1: वाह।

0: वाह
1: मत मेरी दुनिया जली, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या

0: किया पाई में सजा क्या मेरी बता मेरी बता।
1: वाह वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है और बड़ा ही खूबसूरत गाना आपने गुनगुनाया है, और आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए।
0: सचिन भैया की बात सुनेंगे?
1: जी जी जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं,
0: सबका जितना लोग आएंगे।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें बाबी जान, और हमारे भाई साहब का भी खिदमतदारी करनी है, उनकी लुकअप करनी है, और हम कहते हैं कि वो आएंगे। हाँ, अभी थोड़ा बीमार है, थोड़ा एक्स्ट्रा करें उनके लिए, अभी वो उनके खांसी लगी हुई है तो वो बीमार है बेचारा।
0: और
1: हाँ, ठंडी लगेगी। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो आने वाला प्रोग्राम होगा माशाल्लाह, तो उसमें शिरकत करेंगे संडे के इतवार के रोज, तो अच्छा लगेगा।
0: दुआ करना।
1: जी जी, हम आपके लिए हमेशा ही दुआ करते हैं, और आप भी हमारे लिए दुआ करेंगे, और हमारे भाई के लिए दुआ करनी है। बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आए और बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी
0: मच।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, दैट वाज हमारे बाबी जान और हमारे गुरु जी ने कमाल कर दिया, दोनों ने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत अच्छा लगा कि वो आए हैं, और देखो और उन्होंने टाइम निकाल के हमें याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का, शुक्रिया अदा करते हैं। वट अ ब्यूटीफुल फैमिली माशाल्लाह, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स से हमेशा हमें याद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमने क्या करना है, टाइम चेक करना है।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Right, the time in the studio is 10:15 in UK. Good evening, good afternoon, or good morning. Or mashallah, mashallah, mashallah. Hamari mehfil mein dekho ye kaun hai hamari mehfil mein. Aur yahan pe humne choti si break karenge. Break ke foran baad hamara saath de rahe hain hamare mohtar, hamare bhai, hamare dost murshid ji aa chuke hain, aur hamare bahut hi khoobsurat singer hain, bade hi pyare singer hain, wo bhi aa chuke hain, aur wo aap aaye hai hai सद के जामा उन पे कुर्बान जामा, बहुत शुक्रिया सबका।
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: नफसेन जायकातुल मौत।
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।
1: Sunrise and music. राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग सुंदर रेडियो 103.2 एफएम, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मुर्शिद आ गए, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका जो इन्होंने इंतज़ार किया, वेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा ही इनके लिए।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हजूर कैसे तबीयत आप ठीक ठाक है? ठीक है आपकी?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं।
0: माशाल्लाह, हमारी दुआ आपके साथ हमेशा 24 hours a day।
1: इसीलिए तो ठीक रहता
0: है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए ठीक। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या खूब, क्या बात है, क्या बात है जी।
1: तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: हमारे जवेद मीर साहब है, महबूब भलाई
0: जी,
1: वाजिद भाई है, डॉक्टर मालिक साहब है,
0: वाह जी वाह,
1: मुजफ्फर भाई, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है
0: जी,
1: तारिक जुल्खी साहब, चौधरी फरियाद साहब है, कितन भाई साहब
0: जी,
1: चौधरी नईफ है, हीरा खान है, राय अतर हुसैन साहब है
0: जी,
1: फादर से अख्तर
0: जी,
1: अलकयूम साहब, सजाद भाई, साजिद भाई
0: जी,
1: सितारा साहब है, तीखा जी है, सुमित्रा बहन है
0: जी,
1: गजाला जी, रुखसारना
0: सलाम हम पेश करते हैं, डेविड जी हैं और कमला जी हैं, उन दोनों को और उनकी पूरी फैमिली को।
1: नहीं
0: नहीं, फिलहाल नहीं आए तो वो प्रोग्राम सुनते हैं माशाल्लाह, और बड़ी उनकी खूबी है माशाल्लाह, आजकल वो बिजी हैं, वो आएंगे किसी रोज माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है।
1: उनको भी मेरी तरफ से नमस्ते सत्कार
0: जी।
1: तो गजल है एक, तो पीर एजाज दीपक उनका नाम है
0: जी जी, अर्शाद।
1: गरीबों के लिए चूल्हा जलाना हो गया मुश्किल।
0: वाकई बेशक,
1: गरीबों के लिए चूल्हा जलाना हो गया मुश्किल, यहाँ दो वक्त की रोटी कमाना हो गया मुश्किल।
0: हाय हाय हाय,
1: यहाँ फिर लोग पत्तों से ढांकेंगे बदन अपना।
0: हाय हाय,
1: यहाँ कपड़े से पैरहन बनाना हो गया मुश्किल।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: यहाँ महल के मस्कन का भला क्या ख्वाब देखें हम।
0: हाय,
1: यहाँ महल के मस्कन का भला क्या ख्वाब देखें हम।
0: वाह,
1: यहाँ मैदान में खेमा लगाना हो गया मुश्किल।
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
1: गुलामों की नई खेपें यहाँ तैयार होंगी फिर, कि अब नो खैज नस्लों को पढ़ाना हो गया मुश्किल।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह,
1: वतन को छोड़कर अपने वो क्यों परदेश ना जाएं। वतन को छोड़कर अपने वो क्यों परदेश ना जाएं।
0: वाह,
1: यहाँ जिनके लिए जाने बचाना हो गया मुश्किल।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहनी।
1: यहाँ इंसाफ मिलने की भला उम्मीद क्या हो गए। यहाँ इंसाफ मिलने की भला उम्मीद क्या होगी।
0: वाह,
1: यहाँ चोरों पे अगली उंगली उठाना हो गया
0: मुश्किल। आए हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
1: फरेबो कसब की ऐनक लगी है जिनकी आंखों पर,
0: वाह,
1: उनको अब आईना सच का दिखाना हो गया
0: मुश्किल। आए हाय हाय,
1: शुक्रिया।
0: वाह,
1: न जाने कौन से मजहब के जाबिर हुक्मरान हैं ये। न जाने कौन से मजहब के जाबिर हुक्मरान हैं ये।
0: वाह,
1: खुदा के नाम से जिनको डराना हो गया मुश्किल।
0: आई हाय हाय,
1: आखिरी शेर था।
0: वाह वाह वाह वाह, कमाल का दिए, बहुत ही खूबसूरत।
1: तो एजाज का नाम है, दीपक लिखते हैं
0: जी जी,
1: फिर कहते हैं।
0: वाह,
1: जिस रोज तेरा वक्त गुजर जाएगा जालिम, जिस रोज तेरा वक्त गुजर जाएगा जालिम, उस रोज तू बहुत पछताएगा जालिम।
0: आए, आए, आए, वाह।
1: इस देश के दस्तूर से तू खेल ले, पर रब की पकड़ में तू कभी आएगा जालिम।
0: आए हाय, मुकर्रर जी मुकर्रर, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। वाह,
1: इस देश के दस्तूर से तू खेल ले,
0: वाह,
1: पर रब की पकड़ में तू कभी आएगा जालिम।
0: वाह,
1: शद्दाद की जन्नत जैसे महल जितने बना ले,
0: जितने बना। वाह वाह, क्या कहने।
1: शद्दाद की जन्नत जैसे महल जितने बना ले,
0: वाह,
1: एक दिन ये सभी खाक में मिल जाएगा जालिम।
0: हाय हाय हाय, बेशक। वाह वाह,
1: कुदरत के तराजू में जो अहमाल तुलेंगे, लूटा हुआ जर काम न कुछ आएगा जालिम।
0: आए, आए, आए,
1: आए। वाह। फिर तेरे मुआफिज न बचा सकेंगे तुमको, यमलोक में जब मुंह के बल जाएगा जालिम।
0: वाह।
1: आए, आए, आए। तू गोश्त गरीबों का यहाँ नोच ले जितना, तू गोश गरीबों का यहाँ नोच ले जितना, और ही जहन्नम में फकत खाएगा जालिम।
0: वाह।
1: हर पाप तेरा जो नहीं माना जबां से, हर पाप तेरा जो नहीं माना जबां से, और अंग तेरा हश्र में बतलाएगा जालिम।
0: हाय हाय हाय हाय हाय। वाह।
1: तो आखिरी शेर कहते हैं,
0: जी जी,
1: उस वक्त मजालिम पे तुझे होगी नदामत।
0: हाय हाय हाय।
1: उस वक्त मजालिम पे तुझे होगी नदामत, जिस वक्त कोई तोबा न कर पाएगा।
0: हाय हाय हाय।
1: वक्त कोई तोबा न कर पाएगा जालिम।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: जिस रोज तेरा वक्त गुजर जाएगा
0: जालिम,
1: उस रोज तो बहुत बचाएगा जालिम।
0: हाय हाय हाय। वाह वाह वाह वाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और आजकल के दौर में वैसे ही फिट होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और आपने महफिल लूट लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। इतने खूबसूरत आप शायरी लेके आते हैं, गज़ल लेके आते हैं, नज़म लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत। और आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे डॉक्टर मलिक साहब शुक्रिया अदा करें, माशाल्लाह उन्होंने फूल भेजे आपके लिए और बड़े खूबसूरत गुलदस्ता भेजा है, माशाल्लाह बड़े अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूं कम है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं, और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि वो टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं, उजरा अफजाई करते हैं। माशाल्लाह ये हैं खालिद ममूर साहब हैं, जो माशाल्लाह बड़े ही बिज़ी हैं माशाल्लाह आजकल के दौर में, और वो मेरे लिए टाइम निकाल के आते हैं, आ रहे हैं माशाल्लाह। और इनकी जो आवाज़, इनके जो गीत, इनके जो गुनगुनाते हैं माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लबाज़ भी है और शेर शायरी भी बड़ी खूबसूरत करते हैं। और आजकल हमारी ये कहेंगे कि जितना भी वो टाइम दे सके हमें कम है, और हम यहाँ पे उनके लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी ईद हो गई है। जी जी,
2: आपको अब टाइम नहीं दाया करते गाना।
0: जी जी जी जी, गो हेड।
2: तूने न दीजिएगा,
0: वाह,
2: गाना जाएगा,
0: बहुत खूब।
2: रोने न दीजिएगा,
0: वाह।

0: में मोहब्बत कोई करने वाला
1: होई होई
0: चलता है मुश्किल से दुनिया में,

0: मोहब्बत में होता नहीं मरने वाला, चिका है जान ले तू
1: वाह
0: मुझको भी पहचान ले तू।

0: जनाब थोड़ा सा एक और गाना है वो सुनाता हूँ, ये इसका तो मुझे पता नहीं था ये किस फिल्म से है और किसने गाया हुआ है।
1: ये जो गाना जो आपने गुनगुनाया ये फिल्म है तेरे जान तेरे नाम, और बहुत खुशखुशी
0: अच्छा, अच्छा,
1: जान तेरे नाम तेरे, ये कुमार सानू का गीत है जी जी।
0: अच्छा अच्छा
1: जी जी, तो कौन सा गीत गुनगुनाएंगे जी?
2: प्यार से मेरी तरफ ना देखो,
1: वाह वाह।

वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, चमत्कार मूवी का गीत का आपने गुनगुनाया। शाहरुख खान की मूवी थी और बड़ा ही खूबसूरत मधुर आवाज कुमार सानू की, और क्या कहने मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आप आए और बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द वैल्युएबल टाइम आउट फॉर अस, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत शुक्रिया, रब रखा। वाओ क्या गीत इन्होंने गुनगुनाया, मेरे फेवरेट गीत, दोनों के फेवरेट गीत, और क्या कहेंगे इनके बारे में, और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और यहाँ पे हमने छोटी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे भाई शुक्रान, हमारा साथ दे रहे माशाल्लाह, क्या कहेंगे, इनकी जो आवाज़ है, इनके जो गीत है, इनकी जो गज़ल नज़म ओए होए शायरी कमाल की करते हैं, बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना, छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप ए लॉक्ड विद सुन रेडियो

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: राइट, वेलकम बैक लिसनर। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का और जो हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे मोहतरम में हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि मुझे पता है कि ये काफ़ी बिजी है। आई नो इज़ वेरी वेरी बिजी दिस यंग मैन माशाल्लाह, और फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं और अफज़ अफज़ाई करते हैं हमारे लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारे भाई भाई शुक्रान, वन एंड ओनली वन भाई शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
5: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाईजन कैसे मिजाज?
4: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सुनाए कैसे, आपकी कैसे तबीयत है, कैसे जा रहे हैं, किधर फिर?
5: बस माशाल्लाह, आपके फैंस की बड़ी तादाद हो गई है और हमें जबरदस्ती घुसना पड़ता है आपके प्रोग्राम।
4: नहीं नहीं, नहीं आपके लिए मेरे भाई दरवाजा खोल के रखा हुआ है मैंने आपके लिए हमेशा ही माशाल्लाह। क्या कहने,
5: मुझे सबके नाम तो नहीं आते, मैं सबको मतलब के पर्सनली नाम नहीं उनके आते। दी मंसूर साहब और अलीका साहब और जो भी है माशाल्लाह भाभी जान हमारे, तो माशाल्लाह उनको मेरी तरफ से सलाम और लव यू ऑल।
4: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह जी वाह।
5: तो शेर है जी, एक छोटा सा शेर है और साथ में एक गाना माशाल्लाह सुबह से तैयार कर रहा हूँ जनाब के लिए।
4: हाय हाय हाय हाय हाय दोबारा, वाह, इसका मतलब है आप ही तैयारी करते हो। वाह जी वाह, इसका मतलब है कि मैं गैर हाजिरी नहीं करना प्रोग्राम में, मतलब प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या कहते
5: हैं वो, कहते हैं जब सर जी, वो कहते हैं जब किसी के बड़े के सामने पेश हो ना हो ना तो पहले तैयारी होनी चाहिए।
4: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह जी।
5: शेर है जी, रस्तों पे ना बैठ हवा तंग करेगी।
4: वाह वाह वाह, क्या कहने,
5: बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी
4: तंग करेगी। वाह जी वाह, बहुत खूब।
5: मां टूट के चाहो उसे आगाते जफर में, या वो बिछड़ेगी तो हर एक अदा तंग करेगी।
4: इसको दोबारा करिए, मुकर्रर जी मुकर्रर, बहुत खूबसूरत। वाह,
5: रस्तों पे ना बैठ हवा तंग करेगी।
4: वाह जी जी, आपकी आवाज टूट रही है मेरे भाई।
5: जब बिछड़ोगे तो हर एक का दातांग करेगी।
4: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
5: तो गाना सर जी आपके लिए एक बड़ा प्यारा था
4: जी जी। नॉट प्रॉब्लम सर, नॉट प्रॉब्लम, आराम से करें आराम से करें। और आपने ड्राइविंग ही नहीं करनी है, गाड़ी थोड़ा सा पार्क कर दो साइड पे, ठीक है? और आपने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे भाई किसी और जगह बिजी हो चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भाई का। मुझे पता है ये बिजी बिजी रहते हैं आजकल, पता नहीं क्या करते हैं कि बिजी बिजी टाइम, इनका टाइम ही बिजी बिजी। और क्या कहेंगे इनके बारे में। और जी, और मेरा भाई जो है ना वो मेरे ख्याल में उसकी कॉल आ गई है मेरे भाई की। जी मेरे भाई
5: जी जी, अच्छा जी
4: जी जी।
6: ओ ओ खिलौना,
4: हाय हाय,
6: जान कर तुम तो

0: बदला जमाने भर की बातों का, सुनो ठहरो जरा मेहमान, मैं चंद रातों का चले जाना भी से किसे लिए तुम मोड़े जाते हो।
1: वाह
0: खिलौना

0: थैंक यू वेरी मच सर जी.
1: वाह वाह वाह वाह मेरे भाई, खूबसूरत गीत आपने चुना, बहुत खूबसूरत, वाह कमाल कर दिया.
2: मेरा दिल
1: हाय हाय
2: तोड़ जाते,
1: क्या कहने मेरे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें और ऐसे ही गाने गुनगुनाते रहें. और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप गुड रेस्ट ऑफ गुड इवनिंग, ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़. और ये थे हमारे भाई शुक्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाल के आए, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह इनकी में किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बिलीव करने के ये जो माशाल्लाह हमारे भाई आ रहे हैं और बड़े प्यार करने वाले हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूं कम है, बिलीव करें बहुत खूबसूरत हैं. और ये हैं राय अजहर हुसैन साहब, ओल्ड वे फ्रॉम स्कॉटलैंड से हैं, एडिनबरा से हैं, और यहाँ पर वेलकम जी अनु खुश आमदीद सत बिस्मिल्ला कहेंगे यहाँ पर. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मेरे हजूर कैसे तबीयत है, ठीक ठाक और ठीक है आपकी.
3: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप अपने वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, और लुक यू, इतना खूबसूरत मौसम वहाँ पे, और इतनी खूबसूरत कहते हैं कि अमन है, पीस है वहाँ पे.
3: यस मैं आई लव माई सिटी. आपको पता है कि वो इंग्लिश लिटरेचर जब मैं
1: जी
3: कहा करता हूँ, जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करता था तो उसमें जो खूबसूरत नज़में हैं
1: जी जी,
3: जो शायरों ने, कीट्स ने, जॉन गिलियट ने, वुडवर्ड्स ने, और बाकी लोगों ने जो तख्लीक की
1: जी,
3: और हम जब उनको बैठ के पढ़ते थे, और जब फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो मैंने अपने एक दोस्त को लिखा एक दफा,

0: से जो एक आपके अंदर मौसीकियत पैदा होती है, आपके अंदर एक एक रिदम पैदा
1: एक
0: होता
1: रिदम
0: है,
1: पैदा होते है और
0: या वो एक जैसे आप झूला झूल रहे हो ना, तो उसका
2: उसका शोर जो होता है वाह क्या कहने,
0: आ रहा है वो जा रहा है
2: वाह जी वाह क्या कहने, वाह वाह।
0: तो खैर अब मैं अब बैठे बिठाए आपने मुझे पोएटिक कर दिया और मैं किसी और तरफ चला गया। खैर
2: नहीं वो पता कि मुझे खुद पसंद है वो जो एडिंग बरेज है ना, बिलीव करें कि मैं खुद वहाँ पे पसंद करता हूँ वो शॉपिंग वगैरह के लिए, वहाँ पे जो जो रोड है प्रिंस स्ट्रीट है, वो जो रोड है वो जो ब्रिज है वहाँ पे
0: मैं
2: बहुत पसंद करता हूँ, वो मैं बिलीव करें कि आई रियली एंजॉय इट माशाल्लाह। और उसके बाद जो जो वहाँ पे जो पानी है वो जो क्या कहते हैं कि जो बोट्स वगैरह हैं जो क्वींस के हैं वो बहुत खूबसूरत हैं बहुत ही, और उसके बाद वो जो कासल वगैरह हैं, और मैं किस तारीफ करूं वहां पे क्या करें,
0: रॉयल माइल है, कासल है,
2: बहुत
0: और बड़ी चीजें हैं,
2: बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जी।
0: तो खैर बहुत ही, मैं तो खैर किसी भी दुनिया में जाऊं किसी जगह पे भी मैं तो दो चार दिनों में ही इतना उदास हो जाता हूं कि मैं बस भागने ही करता हूं।
2: जी जी जी
0: क्योंकि जाहिर है क्योंकि ये आपके अंदर बसता है ये शहर,
2: ऐसी
0: बस फिर हम भी इस शहर में बैठे हुए हैं तो जब फिर नजूल होता है तो हम भी कुछ कह लेते हैं छोटा।
2: वाह जी अच्छाद अच्छाद अच्छाद।
0: तो आप सब के सामईन के लिए जो आपके सारे सामईन हैं आपकी फैमिली
2: जी जी माशाल्लाह,
0: तो एक ताज़ा गजल मैं ताज़ा ही सुनाता हूँ क्योंकि
2: मुझे पता है मेरे भाई आपके ताज़े फ्रेश होती है आपकी कोरे कोरी
0: मेमोरी खत्म हो जाती है बस लिखता रहता हूँ।
2: नहीं बहुत खूबसूरत लिखते हैं बहुत खूबसूरत लिखते हैं।
0: चलें ये कुछ इशार देखें कि जिसको बुला रहा हूँ वही पास ही ना हो,
2: वाह
0: जिसको बुला रहा हूँ वही पास ही ना हो, इस नाउम्मीदगी में मुझे आस ही ना हो।
2: हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूबसूरत।
0: जिसको बुला रहा हूँ वही पास ही ना हो,
2: वाह
0: इस नाउम्मीदगी में मुझे आस ही ना
2: हो, वाह
0: ये है मेरा यकीन सो जंगल नुमा बहिश्त।
2: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय
0: ये है मेरा यकीन सो जंगल नुमा बहिश्त, लगता है जैसे कोई ये बनबास ही ना हो।
2: बहुत खूबसूरत।
0: लगता है जैसे कोई ये बनबास ही ना हो।
2: वाह
0: और इस आग ही के बारे में मेरा गुमान है।
2: ओए होए होए होए होए
0: इस आग ही के बारे में मेरा गुमान है।
2: वाह
0: एक संगे ना शनास जो अलमास ही ना हो।
2: बहुत खूबसूरत कमाल।
0: इस आग ही के बारे में मेरा गुमान है, एक संगे ना शनास जो अलमास ही ना हो।
2: वाह
0: और शेर देखिए कि दीवानगी की रुत में ये फैली हुई बसात।
2: वाह बहुत खूबसूरत।
0: दीवानगी आजकल इसका जो मौसम है ना उसके दीवानगी की रुत में ये फैली हुई बसात,
2: वाह
0: ऐसे किसी दरख्त पे आकाश ही ना हो।
2: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या
0: वो आपने कभी देखा ना दरख्त पीले रंग की
2: हाँ वो सोच रहा था जी। वाह वाह वाह क्या कहने।
0: दीवानगी
2: वाह
0: की रुत में ये फैली हुई बिसात,
2: हाय हाय हाय
0: जैसे किसी दरख्त पर आकाश ही न हो।
2: वाह वाह
0: और शेर देखें जो पहले पहल तो महका हुआ था मेरा वजूद,
2: हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह
0: पहले पहल तो महका हुआ था मेरा वजूद,
2: वाह
0: अब क्या हुआ जो फूलों की बू बास ही न हो।
2: ओए होए होए होए होए क्या कहने।
0: अब क्या हुआ
2: वाह
0: जो फूलों की बू बास
2: ही न हो। वाह वाह
0: और मैं और तुम्हारी याद के उलझे हुए ये राग।
2: वाह
0: मैं और तुम्हारी याद के उलझे हुए ये राग।
2: वाह
0: बागेश्वरी है और मुझे रास ही ना
2: हो। आय हाय आय हाय वाह
0: बागेश्वरी है और मुझे रास ही
2: ना हो। वाह वाह
0: वो बागेश्वरी में ही मैडम नूरजहां कह ना कि लट उलझी
2: हां हां हां वाह
0: उसका राग जो है वो बागेश्वरी
2: है। बाकी वाह जी वाह वाह
0: शेर है कि मैं और तुम्हारी याद के उलझे हुए ये राग बागेश्वरी है और मुझे रास ही ना हो।
2: वाह
0: अजहर मैं उसकी बात पे हैरत ज़दा रहा।
2: बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह
0: अजहर मैं उसकी बात पे हैरत ज़दा रहा।
2: वाह वाह
0: गोया के मामला मेरा हसास ही ना हो।
2: बहुत खूबसूरत बहुत
0: गोया के मामला मेरा हसास
2: ही ना हो। वाह
0: जिसको बुला रहा हूँ वही पास ही ना हो।
2: वाह वाह
0: ना उम्मीद की मैं मुझे आस ही ना हो।
2: आई
0: बहुत शुक्रिया
2: मेरे भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी खूबसूरत शायरी लेके आते हैं बड़ी

0: कमाल की और बहुत ही लाजवाब, मैं कहता हूँ कि वाह पाई की शायरी करते
1: हैं। कमाल तो आपके वो लोग करते हैं जो बड़े
0: आपकी जो पाई की शायरी करते हैं बहुत।
1: मैं तो सिर्फ बोर करता हूँ अपनी सुना के, क्योंकि मुझे बाकी शायरों की नहीं आती।
0: नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और आपकी जो जो लिखाई है बड़ी खूबसूरती है और उसमें नजर आ रहा है, और माशाल्लाह वो आपको जो नब सुनातों के, और हमारी खुशनसीबी है कि इतने खूबसूरत शायर आपने लिखते हैं और खूबसूरती की तरह माशाल्लाह। और इसी तरह हमेशा ही इंतज़ार करते हैं कि आप आएंगे और कुछ ना कुछ हमें सुनाएंगे, और वो भी ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। क्या ख्याल है? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखें और उस मिट्टी को हमारा भी सलाम पेश करना जो खूबसूरत, वो जो हस्ती है वहाँ पर खूबसूरत है वो। क्या कहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो बहुत जल्द जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जाकल खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, जाकल खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह जी वाह जी वाह, क्या कहेंगे। और यहाँ पे काफ़ी लाइनें बिजी हो चुकी हैं और माशाल्लाह आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और ये हैं हमारे मीठा जी हैं और हमारी खुश नसीबी है, और ये हैं भाई चौधरी रुखसार भाई हैं। और क्या कहें, जितनी मैं तारीफ करें कम है, क्योंकि किसी तारीफ के मताज नहीं है, और फिर भी ये हमारे भाई हैं। वाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुजूर
2: अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम आली जनाब, इज्जत मात, चश्मे रोशन, दिले माचा, बात कमाल, बात आला, बा इज्जत, बा वकार, बा ज़ौक, बा शौक, हर दिल जी शिकस्त, और बहुत नफीस, बहुत लतीफ, बहुत शफीक कसी, मेरे चैंपियन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जब आपने कहा ना चैंपियन, तो मेरा सीना जो ना वो क्या कहने का, सदके जावा मैं, करवान जावा मेरे भाई पे। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं बड़े प्यार के साथ कहते हैं चैंपियन, तो वो एक मेरी बहुत ही प्यारी मूवी है चैंपियन, उसका नाम ही चैंपियन है, और वो मुझे याद आ जाती है, और बड़ी खूबसूरत मूवी है। क्या लिखी है उन्होंने और क्या खूबसूरत आपकी जो अल्फाज हैं और जो मेरे लिए बयान करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक मिशा को खुश रखे, शादाबाद रखे
2: सर, ये क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, और जो आप मैं नचीज के लिए इतने माशाल्लाह तारीफी कलमात अदा करते हैं, वो मैं उनके काबिल नहीं हूँ। यकीन करें कि जो आप मेरे लिए अदा करते हैं ना, वो तो माशाल्लाह ये आपका अल्लाह जरफ है, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार, मैं नचीज के लिए गान करते हैं, लेकिन मैं तो वो कहते हैं ना कि उसे बहुत नीचे वाला का
0: मेरे भाई। मैं यही कहता हूँ कि ऑन एयर कह रहा हूँ, किसी की नजर ना लग जाए, हमारा भी प्यार कायम दायम रहे, ऐसे ही रहे जैसे आप माशाल्लाह करते हैं, और हम ही उनका मानने वाले और आप भी उनके मानने वाले हैं। और या अली मदद,
2: यकीन करें आप, हम फकीरों को क्या नजर लगेगी, क्या ख्याल है?
0: हाँ, ये हम मलंगों को क्या नजर लगेगी, ये मलंगों को क्या नजर लगेगी, कोई करे भी क्या करेगा, क्या ख्याल है? वाकई सही बात है, ये अच्छा बात, ये आपने अच्छी बात की है, माशाल्लाह क्या बात है, वाह वाह क्या कहने।
2: तो सबसे पहले तो आपके दिन की मुनासिबत से, क्योंकि माशाल्लाह सभी जो माशाल्लाह साहिब ईमान हैं और माशाल्लाह जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो हज करके आए हैं, आज का दिन है, क्योंकि मैं तारीख का छोटा सा तालिबे इल्म हूं, क्योंकि मैं जो अल्फाज बयान करता हूँ या किसी कुतुब से पढ़ता हूँ, वो या किसी तारीख के हवाले से कुछ होता है, वो अर्ज करता हूँ, और मैं हर जो लफ्ज बयान करता हूँ उसका मैं जवाबदार खुद होता हूँ, उसका जवाब दे होता हूँ। तो माशाल्लाह आज का दिन जो है ना, आज 18 दिल हज है
0: जी, माशाल्लाह सुभानअल्लाह।
2: और आज यकीन करें कि आज इतनी बड़ी ईद का दिन है ना, जो रसूल ए मआद ने जो फरमाया था खुम्मे गदीर के मौका पर, और यही जेठ हाड़ का महीना था
0: माशाल्लाह,
2: उसी वक्त ये भी हज था, और सरकार रसूल ए मआद का आखिरी और पहला हज था जिंदगी का,
0: ऐसे ही
2: तो उधर जब खुम्मे गदीर पे पहुंचे थे, तो अल्लाह ताला ने जबरील को बोला कि जा मेरे हबीब को कह दे
0: जी,
2: जा अय्यो हर रसूल बल्लग मा उन तेला अलैका मिन रब्बिक
0: जी,
2: मेरे पास कोई कुरान नहीं जो मुझे, मेरे यकीन करके जो मुझे हदीस या आयत याद है मैं वही याद करता हूँ, और अगर आपके पास इस वक्त तो मोबाइल या कोई भी है तो आप उसी वक्त।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे भाई हम जो ना देखो, जो आपके पास जो इल्म है, नॉलेज है, और ये कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, और आपके पास जो इल्म है हमें पता है, और माशाल्लाह खूबसूरत इल्म आपके पास है, और आप शेयर करते रहते हैं, और मैं ज़्यादातर बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पे सर पे जो ना वो अजान जो ना मैंने पेश करनी है, ईशा की अजान में, बहुत क्योंकि کہ وہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ آ گئی ہے تو آپ نے تھوڑا جا آپ مجھے پانچ منٹ دیں گے تو میں آپ کے بعد پھر تھوڑا جا نا میں آپ کے ساتھ بات کروں گا گفتگو کروں گا کیونکہ اذان بھی میں نے پیش کرنی ہے عشاء کی اذان ہے اور وہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے جیسے آپ بات کرتے ہیں تو اس کے حساب پہ ہم چلیں گے تو آپ تھوڑا جا ہولڈ کریں گے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کریں گے
2: جیسے لیے آپ کے لیے قابل احترام ہے اسی لیے ہمارے لیے بھی قابل احترام
0: ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اور بہت اچھا لگا کہ کسٹم سے بڑا اچھا لگا جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ ہم نے اذان پیش کرنی ہے وہ عشاء کی اذان یہاں پہ اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اذان ہونی چاہیے اور تو میں خود پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ
3: Big things are happening at Sunrise Radio.
4: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
3: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
4: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
0: بھی ہم نے اذان پیش کریں گے اور بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا جو بھی میرے بہن بھائی ہیں ساتھی ہیں دوست احباب عزیز ہیں اور ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین بڑے احترام کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ہم اذان سنیں گے اور میرے لیے میری فیملی کی دعا کرنی ہے کیپ الکٹ ود سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم
5: یہ اذان بریڈفورڈ اور گرد و نواح کے علاقوں کے وقت کے مطابق پیش کی جا رہی ہے آپ اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق نماز ادا کیجیے

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक एंड लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सुनराइज रेडियो। और यहाँ पे हमारे साथ देने हमारे मोहतरम हमारे भाई हैं चौधरी रुखसार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी हुजूर, बिस्मिल्लाह,
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह अल्लाह का सलाम सुने, अल्लाह की सदा सुने, माशाल्लाह उसके हमें लबैक कही है,
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
1: और दुआ करेंगे कि चौधरी फयाज साहब को अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, उनके भाई साहब को अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली
0: जिंदगी अता फरमाए,
1: वाजिद भाई को और जितने भी हमारे मुसलमान मेरे भाई हमारी बहनें हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह ताला इस जिक्र का सदका अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और सेहत आदिल अता फरमाए। तो हदीस सरकार की याद आ गई क्योंकि अभी जान हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि हदीस से शुरू किया जाए। तो पाक नबी ने फरमाया जी मैं वर्गा कोई और नहीं,
0: और कोई नहीं बाबा, क्या कहने, माशाल्लाह
1: मन कुन तो मौला याद रखना, मेरे बाद करना तुम शोर नहीं।
0: क्या कहने, माशाल्लाह
1: मेरा ये अटल फैसला है, जेंदी हाथ अली दे डोर नहीं, हशर नू उस दा बेड़ा नहीं पार होना, जेंदी पर्ची ते अली दी मोर नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, क्या कहने।
1: तो ये मनकबत के दो शेर हैं, मुझे पता कि टाइम चार मिनट रह गए हैं, तो अगर जा सको तो मैं सुना दूं।
0: जी जी जी, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। जी जी,
1: क्योंकि आज के दिन के वाले से
0: बिस्मिल्लाह करें,
1: जाके फिर
0: जी जी जी। अच्छा जी जी,
1: कह रहा हूँ।

0: दे आंदे नित कदम मन अली कुमोला। आखिरी शेर
1: जी जी,
0: पैरा को साफ करा के अल्लाह फरमा रहा के जबरील जा मेरे हबीब नु कह दे खुमे गदीर पे, पैरा को साफ करा के हाजियां को रुकवा के मिंबर जी बना के उच्चा अली कूचा के मन को तो मौला वाला सबनु ऐलान सुना दे अजे मुका दे रोला सब दा अली।

आवे तू चानन, मैं घबरा के उठ जानी हूं।

मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के।